FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। सवेरे के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 103.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: क्रोध न करे वरना मन हमेशा अशांत ही रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वही दुखों से मुक्त हो सकता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7 बजे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का 4th भाग। सुबह 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल और दिन में 1 बजे का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का। दिन में 2 बजे कार्यक्रम त्रिवेणी 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम सुनिए प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का 1st भाग। शाम 5 बजे कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा की ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 248। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलेकर। इस श्रृंखला की आज पहली कड़ी आप सुनेंगे और इस कार्यक्रम का

शाम 7 बजे का समय है। जयमाला कार्यक्रम का 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम। रात 8 बजे कार्यक्रम हवा महल। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम और रात 9 बजे का समय है कार्यक्रम आपके लिए का। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता प्राण पर। रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम। रात 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 248।

मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले। श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम की पूजा वंदना करने हेतु जब उन्हें आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को वहां अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 248। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: आज से हम आरंभ कर रहे हैं संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला के अंतर्गत आप सुनेंगे सांध्यकालीन संधि प्रकाश रागों का परिचय। तो आइए पहली कड़ी सुनते हैं, राग है पूरिया धनाश्री।
2: संगीत सरिता सुनने वाले श्रोताओं को मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदुस्तानी रागों के गाने के समय के अनुसार देखा जाए तो हम

तीन वर्ग बना सकते हैं। पहला है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत हो, दूसरा वर्ग जिसमें शुद्ध ऋखभ और शुद्ध धैवत हो, और तीसरा जिसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद। आज मैं आपको संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संधि प्रकाश ये समय दिन में दो बार आता है। रात समाप्त होने के बाद जब दिन शुरू होता है उस समय, और जब दिन समाप्त होकर रात शुरू होती है तब। ये जो दोनों समय है इनको संधि प्रकाश कहते हैं, और इन समयों पर जो भी राग गाए जाते हैं उनको संधि प्रकाश राग कहा जाता है। हिंदुस्तानी रागों का हम तीन वर्गों में वर्गीकरण कर सकते हैं, उनके गायन के समय अनुसार या उनमें जो स्वर आते हैं उनको उनके अनुसार। ये तीन वर्ग हैं। पहला है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल वत है, दूसरा है जिसमें शुद्ध ऋषभ और शुद्ध धैवत है, तीसरा है जिसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद। इसमें जो पहला वर्ग है जिसमें कोमल ऋखभ और कोमल धैवत, ये राग सारे संधि प्रकाश रागों में आते हैं, और इन रागों को संधि प्रकाश राग कहा जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें गंधार शुद्ध ही होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि ये संधि प्रकाश का समय दो बार आता है, एक जब रात खत्म होके दिन शुरू होता है और दिन खत्म होके रात जब आती है। और मैं आपको जब दिन खत्म होके रात शुरू होती है उस वक्त जो संधि प्रकाश राग गाए जाएंगे उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। इन रागों में पूर्वी, पूर्याधनाश्री, मारवा और श्री ये प्रमुख राग हैं, और इनमें जैसा मैंने कहा कि ऋखभ और धैवत कोमल होता है और मध्यम तीव्र होता है। आज मैं आपको इन रागों में से पूर्याधनाश्री उसके बारे में कुछ बताऊंगी। इसमें ऋखभ और धैवत कोमल मध्यम तीव्र है, अन्य सारे स्वर जो हैं शुद्ध हैं, इसमें वर्जित स्वर कोई भी नहीं है। इसकी जाति संपूर्ण है क्योंकि इसके आरोह और अवरोह में सातों स्वरों का उपयोग होता है। इसका वादी स्वर है पंचम और संवादी स्वर है षड्ज। गाने का समय जैसा मैंने बताया तो उसका असर बहुत अच्छा हो सकता है। इसका आरोह अवरोह मैं आपको अभी थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ।

मैं पूरिया धनाश्री का आपको थोड़ा सा चलन बता दूं। इसका कारण ये है कि ये संधि प्रकाश रागों में पूरिया धनाश्री, श्री या पूर्वी, इनके स्वर काफी मिलते जुलते हैं। श्री और पूरिया धनाश्री के तो स्वर एक ही हैं, लेकिन उनका आना जाना, स्वरों का आना जाना जो है वो अलग करने की वजह से रागों को अलग आइडेंटिटी मिलती है। हमारा हिंदुस्तानी संगीत इस तरह से बनाया है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि वही सब तक है, लेकिन रागों का चलन ऐसा बुजुर्गों ने रखा है कि अलग अलग शक्ल बना देता है राग अपनी। तो पूरिया धनाश्री के स्वर और श्री के स्वर एक होते हुए भी देखिए पूरिया धनाश्री का चलन कैसा है।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पूरिया धनाश्री में एक रचना उस्ताद अमीर खां की आवाज में। इसे हमने लिया है फिल्म बैजू बावरा से।

0: प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत ये थी सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा की पहली कड़ी। राग था पूरिया धनाश्री। तबला संगति ओमकार गुलवाड़ी की थी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सुधीर नायक।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

अगर काम कठिन है तो छोटे छोटे प्रयासों से आगे बढ़े। अगर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को आज की सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज का नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी अपने रेडियो साथी शालिनी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ।

समय और परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है।

सुविचार के बाद आइए श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज की हमारी चर्चा की ओर। आज की हमारी चर्चा का विषय है हरियाली राजस्थान। दोस्तों, आज हम चर्चा एक ऐसे विषय पर कर रहे हैं जो केवल पर्यावरण से ही नहीं बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। हरियाली राजस्थान यानी कि हरियाली से खुशहाली की ओर। कहा भी गया है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारने साधुंधरा शरीर। अर्थात पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वे दूसरों के लिए जीती हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से सब कुछ देती है, इसीलिए उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। श्रोताओं, राजस्थान की पहचान केवल रेगिस्तान से ही नहीं बल्कि वीरों की धरती होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों की भी भूमि है। अरावली की पहाड़ियाँ, मुकुंद्रा की हरियाली, चंबल और कालीसिंध की जलधाराएं और हाड़ोती का प्राकृतिक सौंदर्य इस बात का प्रमाण है कि यदि प्रकृति को अवसर मिले तो राजस्थान भी हरियाली की मिसाल बन सकता है। आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, वर्षा का स्वरूप बदल रहा है, भूजल स्तर घटता जा रहा है। ऐसे समय में हरियाली राजस्थान अभियान आशा की एक नई किरण बनकर सामने आया है। इसका उद्देश्य केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित रखकर पेड़ बनाना और पूरे प्रदेश को अधिक हरा भरा बनाना है। श्रोताओं, एक छोटी सी घटना पर ध्यान दीजिए। दो पड़ोसी थे, दोनों ने अपने घर के सामने एक एक पौधा लगाया। पहले व्यक्ति ने पौधा लगाकर उसे भूल गया, कुछ ही दिनों में वह सूख गया। दूसरे व्यक्ति ने प्रतिदिन उसे पानी दिया, उसकी रक्षा की और कुछ वर्षों बाद वही पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। उसकी छाया में राहगीर आराम करने लगे, पक्षियों ने घोंसले बनाए और गर्मियों में आसपास का वातावरण भी ठंडा रहने लगा। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि पौधे लगाना और उसको उसकी असली देखभाल करना ही हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान की संस्कृति भी हमें ये संदेश देती है। खेजड़ली का बलिदान आज भी पूरे देश को प्रेरणा देता है। अमृता देवी बिश्नोई और 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका यह त्याग हमें बताता है कि प्रकृति की रक्षा केवल एक कार्य नहीं बल्कि हमारी संस्कृति

शक्ति और जीवन मूल्यों का हिस्सा है। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं बल्कि हम सबकी भागीदारी इसमें आवश्यक है। यदि प्रत्येक परिवार हर वर्ष केवल एक पौधा लगाए और उसे पेड़ बनने तक संभाले तो कुछ ही वर्षों में पूरे प्रदेश का स्वरूप बदल जाएगा। हम अपने दैनिक जीवन में कई छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे कि घर या आंगन में पौधे लगाना, वर्षा जल का संरक्षण करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, जल और बिजली की बचत करना और बच्चों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना। ये सभी प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। कहा भी गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान होता है। यह कहावत हमें बताती है कि एक पेड़ का महत्व कितना बड़ा है। यह वर्षों तक अनगिनत लोगों को शुद्ध हवा, छाया और फल देते हैं। आज पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल विश्व पर्यावरण दिवस या वन महोत्सव के अवसर पर ही पौधे नहीं लगाएं, बल्कि पूरे वर्ष पर्यावरण संरक्षण को अपनी आदत बनाएं। आइए आज हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि एक पौधा अवश्य लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और कम से कम एक अन्य व्यक्ति को भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए कि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज लगाया गया पौधा कल किसी बच्चे को शुद्ध हवा देगा, किसी राहगीर को छाया देगा और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देगा।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

आवेदन में अभ्यर्थी 15 तक कर सकेंगे संशोधन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन का अंतिम अवसर दिया है। जिले के अभ्यर्थी 15 जुलाई रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं।

वर्ष मुख्य परीक्षा के आवेदन 20 तक डीएलएड द्वितीय वर्ष मुख्य परीक्षा पूर्ववर्ती एवं पूरक द्वितीय अवसर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल से 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों का सत्यापन अनिवार्य होगा।

खाते अपडेट तो बीमा क्लेम का भुगतान जल्दी मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले वर्षों के बकाया क्लेम का भुगतान जल्द किया जाएगा। पात्र किसानों से बैंक खाते अपडेट कराने की अपील की गई है। खाते बंद या सत्यापित नहीं है तो किसान पासबुक, आधार, बीमा पॉलिसी, पुराने खाते का विवरण व प्रपत्र ए जमा कराना होगा।

नवीं से 12वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि 25 तक बढ़ी। राजस्थान के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026 और 27 के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़कर 25 जुलाई कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार पहले कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 जुलाई निर्धारित थी, लेकिन विद्यार्थियों के हित में इन्हें 14 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के अनुसार यह निर्णय प्रदेश के विद्यालयों के नामांकन को बढ़ावा देने और पढ़ाई बीच में छोड़ चुके बालक बालिकाओं को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से लिया गया है। विभाग का मानना है कि समय सीमा बढ़ाने से ऐसे विद्यार्थियों को भी अवसर मिलेगा जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने से वंचित रह गए हैं।

आइए अब चलते हैं आज के मौसम की जानकारी लेते हैं। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। बादल छाए रहने के साथ ही बूंदाबांदी के आसार हैं।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

श्रोता आपसे कुछ ही देर में यानी 7:30 पर सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्म संगीत। 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत।

आप सुनेंगे 8:30 पर चर्चा होगी गृहिणी की समझदारी पूरे परिवार की सुरक्षा पर। भेंटवार्ता में आप सुनेंगे मानसून में घर की स्मार्ट देखभाल, दीपाली सोनी गृहिणी से रोशनी चौरसिया की बातचीत। जानकारी की बातों में आप जानेंगे अमृत 2.0 के बारे में।

युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5 बजे। चर्चा होगी बरसात में स्वास्थ्य की देखभाल, नशा मुक्त भारत में युवाओं की भूमिका। महारो राजस्थान में आप सुनेंगे 3 ओर पानी से घिरा अनोखा जल दुर्ग गागरोन का किला। भेंट वार्ता में आप सुनेंगे सीईटी एग्जाम पर संजना सिंह से शिवाधी सिंह चौहान की बातचीत। जानकारी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में भी आप जानेंगे। आज के इतिहास से जुड़ी बातें, रोजगार सूचनाएं भी इस कार्यक्रम में सुनेंगे और साथ ही आनंद लेंगे फिल्मी गीतों का। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्म संगीत। 7 बजे आप सुनेंगे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल। चर्चा होगी जीवामृत निर्माण और उपयोग पर। भेंटवार्ता में मक्का और ज्वार की, ज्वार में खरपतवार कीट एवं रोग नियंत्रण, प्रगतिशील किसान अभिषेक पाटीदार ग्राम ओसारा से अशोक कुमार शर्मा की बातचीत। जानकारी की बातों में मंगला पशु योजना के बारे में आप जानेंगे। मौसम, बाजार भाव, समर्थन मूल्य भी आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे।

8:15 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से पुनः फिल्म संगीत और रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, ये थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

श्रोताओं, आज का नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम बस यहीं तक। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई चर्चा, गीत संगीत और बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी शालिनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए दुश्मन फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत उत्तम सिंह का है।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मासूम फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा।

0: अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
1: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों

0: पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मूज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अमावस नाथ और पूनम चंद्र प्रेमी की आवाज में अभी आपने लोक रचनाएं सुनी और इसी के साथ लोक संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं महिलाओं और बहनों का अपना कार्यक्रम महिला जगत।

ही महिलाएं अपने परिवार की रीढ़ होती हैं। हमारी बुद्धिमत्ता, सतर्कता, दूरदर्शिता न केवल घर को सुचारू रूप से चलाती है, बल्कि आय व्यय, स्वास्थ्य रक्षा, मुसीबत के समय सूझबूझ से पूरे परिवार को खुश और सुरक्षित रखती है। इसके अलावा कुछ विशेष तरह की बातें हम गृहिणियों में होती है, जैसे थोड़ी थोड़ी बचत करके मुसीबत के समय इमरजेंसी फंड तैयार रहता है, और हमारे हाथ में जितने भी पैसे रहते हैं उतने में ही घर खर्च को समेट लेती हैं और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती, और तो और उसमें से भी कुछ राशि बचाने का हुनर भी रखती हैं। इसके अलावा घर में सभी का स्वास्थ्य बेहतर रहे इसके लिए शुद्ध और पौष्टिक आहार खिलाकर शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखती हैं। और मालूम है सखियों, छोटी मोटी चोट हो, मौसमी बीमारियां हो, इनको तो ये यूं चुटकियों में दूर भगा देती हैं। अरे भाई, इनके दिमाग का फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा तैयार रहता है, जो समय समय पर घरेलू उपचार इनकी सहायता करता रहता है। अब और क्या क्या बताएं, इनकी सूझबूझ की कोई होड़ नहीं है। एक साथ इतने काम करती हैं, इनकी टाइमिंग इतनी सॉलिड होती है, याददाश्त इतनी तेज होती है, जिसको बता पाना एक दो घंटे की बात नहीं है। इसके लिए लिखें तो पेज कम पड़ जाए और बखान करने बैठें तो समय कम पड़ जाए, है ना? पर क्या करें, मैं भी एक महिला हूँ, तो ये सब जैसे मैं खुद को याद दिलाकर मन ही मन खुश होती हूँ और आईने के सामने खड़ी होकर कभी कभी इतराती हूँ कि कुछ तो खास बात है इस किरदार में, वरना यूं ही जिंदगी में इतनी बहार ना होती। चलिए चलिए, वापस आ जाइए अपने ख्वाबों की दुनिया से, बाहर आ जाइए। क्यों इंतज़ार करना कि कोई और हमारी तारीफ करेगा? अपनी खुशी और हंसी को किसी और का मोहताज ना होने दीजिए। जब भी मन उदास हो, खुद को आईने के सामने खड़ा कीजिए और अपने आप को निहारिए, और इस गाने को भी गुनगुनाइए।

नारी है घर की रौनक, नारी है घर की शान, उसकी बिना अधूरा लगता हर एक अरमान। ममता, प्रेम और त्याग से जीवन को महकाती है, घर की हर महिला सचमुच देवी कहलाती है। ये प्यारी सी पंक्तियाँ हमारी नारी शक्ति को समर्पित, और इन पंक्तियों के साथ स्वीकार कीजिए आपकी सखी रोशनी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक का सफर अगर हम देखें तो महसूस करेंगे कि हम महिलाओं के लिए समय चक्र कभी नहीं बदला। बस समय समय समय पर महिलाओं की भूमिका बदली है। हम सब

0: और इस गीत के बाद तारीफों का सिलसिला हम अभी बाकी रखते हैं। सखियों, आप सभी को मालूम है कि बारिश ने दस्तक दे दी है और इस मौसम में जहां सभी लोग आनंद और मस्ती में अपना समय बिताते हैं, वहीं एक महिला के दिल और दिमाग में कई तरह के विचार, आइडियाज और सुरक्षा के साथ हिलोरे लेते हैं, फिर चाहे वह कामकाजी महिला हो या घर को संवारने वाली हाउसवाइफ। आइए जानते हैं दीपाली सोनी, हमारी आज की सखी से, कि इस मौसम में वो किस तरह की तैयारियां करके रखती हैं ताकि इस दौरान परिवार को किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए जानते हैं बारिश के मौसम में इनके विचार, जो इन्हें आम से खास बनाती है। महिला जगत कार्यक्रम में बरसात के मौसम में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारे टिप्स, और जैसे कि हमारा विषय है कि स्मार्ट देखभाल हम घर की किस तरह से कर सकते हैं, तो आज की सखी हमारी दीपाली सोनी से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। तो स्वागत करते हैं आपका दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आप बताएं कि आपको हमसे जुड़ के कैसा लग रहा है और इस कार्यक्रम में आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है, मेरे जीवन का पहला अनुभव है कि मैं आकाशवाणी में बोल पा रही हूँ।
0: ये जो हमारी गृहिणियाँ हैं वो अपने काम में इतनी दक्ष होती हैं कि छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो हमारी जो नई सखियाँ हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है उनको अभी इतनी नॉलेज नहीं रहती है कि घर का रखरखाव कैसे करना है, घर की चीज़ों का रखरखाव कैसे करना है। तो अब चूँकि बारिश का मौसम आ गया है तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ हमारी उन नई नवेली बहुओं के लिए आने वाली है जिनकी अभी अभी शादी हुई है, तो आप उनको नज़र में रख के उनके लिए ऐसे टिप्स बताएं ताकि वो छोटे छोटे टिप्स को आजमा के और अपनी चीज़ों की सुरक्षा रख सके। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि बरसात में हम घर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?
1: छत और दीवारों की वाटरप्रूफिंग करवाएं, नालियों और पाइपों की सफाई सुनिश्चित करें ताकि जमा हुआ पानी जमा न हो सके, और बिजली के तारों की जांच हमेशा करती रहे ताकि शॉर्ट सर्किट न से बचे।
0: इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो घर के अंदर दीवारों में, जो कमरों में और अन्य जगह जो सीलन आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: छत और दीवारों को बारिश शुरू होने से पहले ही छत के दरारें भरवाएं और वाटरप्रूफ करवाएं ताकि सीलन ना आए। इतना करक से आप नमी से बचा सकते। दरवाजे और खिड़की, लकड़ियों के दरवाजे और खिड़कियों को नमी के फूलने से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी का वाटरप्रूफ रेसिडेंट या पेंट या वॉर्निश करवाएं। पाइप और नाले की छत की, बालकनी और आंगन की रेट वाटर पाइप और नालियों में साफ रखें ताकि पानी आसानी से निकल जाए और जल

0: ना।
1: तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपने बताया कि जो पाइप है और बिजली के तार हैं, इनसे भी हमें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, तो हम किस तरह की सुरक्षा बिजली से अपने बच्चों की कर सकते हैं?
0: वायरिंग की जांच हमेशा करते रहे। बारिश में शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। किसी इलेक्ट्रिशियन से घर को पुरानी तारों का स्विच बोर्ड चार्ज करवाएं। अर्थिंग सुनिश्चित करें ताकि मेन मीटर उपकरणों में अर्थिंग ठीक से काम कर रही है। आउटडोर फिटिंग, बाहर लगे बल्ब, लाइट या मोटर पंप को वाटरप्रूफ कवर से ढक कर रखें।
1: तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी सखियों को दी है। कई बार क्या होता है कि कहीं कहीं पानी का भराव ज़्यादा रहता है, रोड पे हम देखते हैं, नालियों में, या हमारे छत पे कई ऐसा सामान इकट्ठा रहता है कि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उससे होने वाले कीटों और मच्छरों से हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं?
0: कीट और मच्छरों के बचाव के लिए ठहरा हुआ पानी घर के आसपास गमलों, कूलर या टायरों में पानी जमा न होने दें। इससे डेंगू या मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। कीटनाशक का प्रयोग करें। कॉकरोच, दीमक और अन्य कीड़ों से बचाव के लिए घर के कोनों में, नालियों में फिनाइल या ब्लीचिंग पाउडर का नियमित छिड़काव करते रहें। जालीदार दरवाजे, मच्छरों को घर में घुसने से रोकने के लिए खिड़की और दरवाजों पर मच्छर वाली जालियां लगवाएं।
1: अच्छा, ये तो बात हुई हमारे जो घर का रख रखाव है, मच्छरों से बचाव है, ये इनकी बात हुई। अब अगर हम बात करें कि हमारे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और गर्भवती महिलाएं भी रहती हैं, तो उनके लिए हम साफ सफाई का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं?
0: साफ सफाई और रखाव के लिए सीलन वाले कपड़े, अलमारी में रखे कपड़े में बदबू आने लगती है इसलिए अलमारी में नेपथिंग की गोली या कपूर रखें। जूते और कालीन, बारिश में भीगे जूतों को घर के अंदर न लाएं। भारी कालीन, कारपेट रोल करके किसी सूखी जगह पर रख दें। वेंटिलेशन, घर में ताज़ी हवा आने दें और धूप निकलने से पहले खिड़की दरवाजे खोल के अंदर की उमस और नमी को ख़त्म कर सकें।
1: इसके बाद दीपाली जी हम बात करते हैं हमारे जो खाद्य पदार्थ रहते हैं, हम महिलाएं हमेशा बचत के तौर पे कुछ चीज़ें बना के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो उनमें भी एक तरह की सीलन आ जाती है बारिश के दिनों में, तो उस सीलन से बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं?
0: जैसे मई और जून के महीने में अच्छी धूप रहती है
1: जी,
0: तो उन जितने दालें हैं, सूखे अनाज हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, इनको अच्छी धूप देकर या गृहिणी जितने भी गर्मी में मेहनत से अपने मूंग के पापड़ हुए, सेवैया, मूंगेड़िया, इतनी सारी चीज़ें बना के रखती है, चिप्स वगैरह बना के रखती है ताकि बारिश के मज़े लिए जाए। जो उन सारी चीज़ों को मई और जून के महीने में अच्छे धूप में देकर एयर टाइट डिब्बे में रखे और डिब्बे का अच्छे से ध्यान हो कि वो सूखा हो अच्छे से ताकि आगे चल के चीज़ें ज़्यादा दिन तक स्टोर करी जा सके।
1: तो ये हमारी नई गृहिणियों के लिए बहुत अच्छी बात है, और ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि वो जो डिब्बे में सामग्री रख रहे हैं वो डिब्बा एकदम सूखा। अगर सुरक्षा के तौर पे हम देखें तो इस मौसम में हमें अपने बच्चों की देखभाल किस तरह से करना चाहिए?
0: देखा जाए तो छोटे बच्चों में बारिश का मौसम बहुत दिक्कतदायी होता है। छोटे मतलब 4 से 5 साल के बच्चों में तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर अपन उनको कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो उनको पूरे आस्तीन के कपड़े पहनाएं, नीम या नारियल तेल का लोशन लगाएं और जहाँ हरियाली ज़्यादा और घास हो रही हो वहाँ से उनको दूर रखें ताकि कोई विषैला जंतु उनको काट ना जाए। इससे अपन को कोई परेशानी नहीं आए, सुरक्षापूर्ण जाए और बच्चों का ध्यान रखें।
1: जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे बच्चों को और हमारी महिलाओं को दी है। तो दीपाली जी, जाते जाते आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सखियों को क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: जी, बारिश का मौसम तो सभी गृहिणी को बहुत अच्छा लगता है। गृहिणी से लेके बड़ों से लेके छोटे सबको ही, बुजुर्गों तक अच्छा लगता है ये मौसम। अपन बाहर जाने की इच्छाएं भी बहुत जाहिर करते हैं। बाहर फैमिली के साथ घूमने फिरने जाए पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें कि नदी तालाब भरे रहे तो उनसे अपनी दूरी बनाए रखें ताकि कोई अपन को पता नहीं कि पानी कितना गहरा है, क्या है। अपने सेल्फी के चक्कर में नाव में बैठे, बोट में बैठे तो पहले ध्यान पूर्वक से बैठे ताकि अपने नुकसान नहीं और वो बारिश का मौसम अपना यादगार बना रहे। जैसे मैं गृहिणी को याद दिलाना चाहूँगी कि खाने के विषय में विशेष पूर्ण ध्यान रखे। बाहर की चीज़ें तली गली नहीं खाए क्योंकि पहले के समय में अपन सारी महिलाएं मिलके घर में जो भी इच्छा जाहिर करें वो बना के खा सकते थे, पर आजकल की बिजी लाइफ को देखते हुए

0: सब बाहर अपने टाइम बचाने के लिए बाहर की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचे ताकि अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से बना रहे, क्योंकि बारिश के मौसम में अपना हाजमा खराब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, दस्ते उल्टियाँ होने की भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए जो भी इच्छाएं हो, जो भी खाना हो, अपने घर पे बनाए, स्वच्छ रूप से बनाए और सुरक्षित रहे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी सखियों को दी है, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे बच्चों को, महिलाओं को दी है। आशा करते हैं हमारी महिलाओं को ये वार्ता ज़रूर पसंद आई होगी। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद बहुत।

और इस गीत के बाद हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं की। जैसा कि हम हमेशा कार्यक्रम के अंत में आपको एक नई जानकारी देकर जाते हैं, तो इस बार भी हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी, अमृत 2.0। ये एक सरकारी योजना है, इसका पूरा नाम अटल

नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन है। इसका मुख्य विषय या कह लें कि उद्देश्य है देश के सभी शहरों और कस्बों में नल से जल की आपूर्ति, सीवरेज, सेफ्टेज प्रबंधन सुनिश्चित करना और शहरों को आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाना। सखियों, हम सभी जानते हैं कि जल ही हमारा जीवन है और उसको बचाना आने वाली पीढ़ी को एक अनमोल उपहार है। इस मिशन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे पेयजल की उपलब्धता, इसमें देश के सभी वैधानिक शहरों में हर घर तक चालू नल के माध्यम से पानी पहुंचाना ताकि हमारी आम जनता को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। फिर है सीवरेज और स्वच्छता। सीवरेज और सेफ्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक सुविधा उपलब्ध कराना इस मिशन का उपलक्ष्य है, उद्देश्य है। जल संरक्षण में जल निकायों मतलब तालाबों और झीलों का पुनरुद्धार और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है। शहरी विकास में हम देखेंगे कि पार्कों और हरित क्षेत्रों का विकास कर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना इस मिशन का उद्देश्य है। और हमारे राजस्थान में तालाब सुधार के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है और ये जल बचाने का जो कार्य है हम आम नागरिकों के हाथ में भी है। हम कम से कम जल का उपयोग करें और जैसे हम नल का पानी जो है वेस्ट करते हैं, हमारे घर नल आते हैं तो हम उसका वेस्टेज करते हैं, नल को चालू रखते हैं और गाड़ी धोने लग जाते हैं या हम शावर से नहाते हैं, तो इस चीज़ को हमें अपनी आदतों में ढालना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि अगर हम ब्रश कर रहे हैं या हैंड वॉश कर रहे हैं तो नल को तभी ऑन करें जब हमें हैंड वॉश करना है या कुल्ला करना है, या हम जब ब्रश को कर रहे हैं तब हमें उसको बंद रखना है। इससे हम काफ़ी हद तक अपने बच्चों में जल को बचाने में मदद कर सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें आगे चलकर हमारे बच्चों के लिए अच्छी साबित होंगी। और अब कुछ खास बातें, खाने में सुरक्षित उबली हुई सब्जियां। सखियों, बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, फिर भी अगर हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो इन दिनों सब्जियों को उगाने से लेकर पकाने तक कई तरह के कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग होता है जिससे सब्जियां दूषित हो जाती हैं। ऐसे में जब भी हम सब्जियों को उबालते हैं तो उस समय इसमें मौजूद गंदगी, बैक्टीरिया और हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब भी हम इनका सेवन करते हैं तो शरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। इस दौरान याद रखने वाली बात है कि उबालने के बाद इन्हें 2-3 बार पानी से धोना चाहिए ताकि नष्ट हो चुके कीटाणु अच्छे से इनमें से बाहर निकल सकें। ये ध्यान रखें किसी भी सब्जी को ज़रूरत से ज़्यादा ना उबालें वरना ये अत्यधिक मात्रा में गल जाएंगी और खाने लायक नहीं रहेंगी। केवल एक उबाल आने तक ही इन्हें उबालें। हरी पत्तेदार सब्जियों और अन्य सब्जियों को एक साथ नहीं उबालना चाहिए। इसका एक कारण पोषक तत्वों की कमी होना या इनका बेमेल होना हो सकता है। उबली सब्जियों का स्वाद भले ही थोड़ा अलग लगे लेकिन एक बार इनकी आदत होने पर सेहत को काफ़ी फायदा होता है। इसमें मसाले और तेल संतुलित मात्रा में हम डाल सकते हैं। चलिए जाते जाते हम आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: इसी गीत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: महिला और बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। सवेरे के 9 बजने को है, कुछ ही देर में सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, राज्यों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा, राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत। बालोतरा जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने से अधिकतर हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य जल संसाधन क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करना और प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना है। सम्मेलन के दौरान जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, बांध सुरक्षा, जलाशय प्रबंधन, राज्य जल सुधार ढांचे, सिंचाई जनगणना और कैच द रेन अभियान सहित कई प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन भी आज से शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रहे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वे लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सके। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में

0: जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। जिला स्तर की विजेता राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहीं राज्य स्तर की विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में आमंत्रित किया जाएगा। माय भारत 5 रचनात्मक श्रेणियों, नृत्य, संगीत, रील और लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक और कविता में प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा है कि राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रभावी प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को मातृ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी प्रोटोकॉल की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक मातृ मृत्यु अत्यंत संवेदनशील विषय है और राज्य सरकार हर मामले की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। मंत्री ने बताया कि भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हाल ही में प्रसूताओं की मौत के मामलों की निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत जांच कराई जा रही है। अब तक की जांच में चिकित्सकीय लापरवाही का कोई स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है। श्री खेवसर ने कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या प्रोटोकॉल के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल का कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग 2000 से अधिक मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉ अनिल शर्मा ने बताया कि ये आधुनिक तकनीक पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी की तुलना में कम दर्द, कम रक्तस्राव, तेजी से स्वस्थ होने और बेहतर परिणाम के लिए जानी जाती है। इस तकनीक से मरीजों को कम समय में अस्पताल से छुट्टी मिलती है और सामान्य जीवन में जल्द वापसी संभव हो पाती है। उन्होंने इसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
1: हमारे हिंदुस्तान में SMS मेडिकल कॉलेज में जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हमने यहाँ पर 32 तरह के ऑपरेशन कर दिए, जबकि सारी दुनिया में 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसमें भी जान पे चीरा लगाया जाता है। हमारे यहाँ हमने 2000 ऑपरेशन कर दिए कुल मिला के मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में, जिसमें हमने 32 तरह के अलग अलग ऑपरेशन किए हैं और हमारे सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं और हमारी सक्सेस रेट करीब 99.5% है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। बालोतरा के पास देर रात हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा भांडियावास के पास हुआ, जहां एक SUV आगे चल रहे डंपर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 घायलों ने जोधपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में घायल 3 लोगों का जोधपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पचपदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए 310 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना पर काम चल रहा है। परियोजना के तहत पुराने कचरे का बायो माइनिंग तकनीक से निस्तारण किया जाएगा और इन स्थानों पर आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी। परियोजना के तहत 152 नगरीय निकायों में लगभग 75 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जीरो डंप साइट के राष्ट्रीय लक्ष्य को गति देना है। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में स्वच्छता के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। पाली जिले में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026 के तहत सोजत नगर पालिका द्वारा मुख्य मार्गों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की दीवारों को आकर्षक कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाली संवाददाता।
2: राजस्थानी संस्कृति के तहत ऊंट, मैना, हिरन और विभिन्न वन्य जीवों की कलाकृतियों के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। पेड़ पौधों और हरियाली की पेंटिंग्स से आमजन को पौधरोपण के प्रेरित कर रही है। वहीं दीवारों पर गीला कचरा, हरे डब्बे में सूखा कचरा, नीले डब्बे में जैसे

0: चित्रों के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और खुले में कचरा नहीं फैलाने का संदेश दे रही है। साथ ही अब यह पेंटिंग्स आकर्षक सेल्फी पॉइंट बन रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-2025, 2025-2026 और 2026-2027 के लिए पदोन्नति हेतु आवश्यक अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। श्री शर्मा कल जयपुर में सचिवालय सेवा अधिकारी और सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ गया है, इससे अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने और बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि आगामी 2 दिनों तक बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी अगले 5 से 6 दिन अधिकांश स्थानों पर मॉनसून कमजोर रहने के आसार हैं। जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र में आज से 15 जुलाई के दौरान कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलौदी में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत। बालोतरा जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने से अधिकतर हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
3: अभिजीत की आवाज में लीजिए अब सुनिए जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना, अनु मलिक का संगीत, फिल्म का नाम मैं हूं ना।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का गाना आवाज है अलका याग्निक की, समीर का लिखा हुआ गाना है और संगीत नदीम श्रवण का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना कभी अलविदा ना कहना, इस फिल्म का गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में कभी अलविदा ना कहना इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मंजू द्विवेदी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।

लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।
1: बुजुर्गों ने

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे। जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब कब बात बोलूं साहब?

0: जिंदगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का है? मैं आऊं विशाल। पंडित जी शुरू कीजिए।
2: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
1: इकबाल मियां, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं।
2: वस्त्र कंधे पर रख लीजिए।
1: सिकंदर, सिकंदर क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई। किससे हुई? बहन किससे हुई?
3: नहीं बताती हूँ।
1: नहीं,
3: दिलावर मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होती।
1: बस बस करो मेम साहब। मेम साहब क्या काम ना है तेरे मेम साहब जिससे तू?
3: नहीं मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को
1: करता।
3: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो। विशाल सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर ये तुमने क्या किया? क्या?
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
4: तुम?
5: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
6: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती है तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
0: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया। एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई। एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

91 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं, सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं जो कहता हूँ, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूँ, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगण

0: डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था. डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे. फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की. और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है. तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी. और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है, तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था. पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे, तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ. और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है. तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है. और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा. फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने. फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है. पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
0: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था. तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था. लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था, वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे.
1: बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता.
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना. और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत.
0: यस,
1: ये गाना सुनते हैं.

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं, और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे, और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम नहीं, और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और नीलू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को

0: रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। सो ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल बागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
1: विरोध करेगा,
0: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
1: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
0: करेक्ट। सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
1: गजब।
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
1: वो आराम से बेच सकते थे, पैसे ले सकते थे।
0: बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे, आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा, सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं, उधर डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा, क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे, जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूँ, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा, बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है

0: वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये
1: बिल्कुल
0: मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन है,
0: ट्रेडिशन है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे, जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है, जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दम सांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे कमजोर होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो। आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है। इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली, और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूँ, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो। ओके या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूँ मैं, तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
1: ये होना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो, नहीं
0: और
1: होना चाहिए।
0: नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल।
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
1: राइट,
0: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं,
0: exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए,
0: बहुत,
1: और
0: बहुत
1: लोगों को
0: अपनी
1: प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय।
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी।
1: ओहो।
0: और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए थे,
0: दूर दूर से आए थे। और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं।

0: महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो, कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर एक दो तीन महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं। वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखिए, उसके कई मायने हैं और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इसलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: यहाँ एक गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी, और बहुत दिलचस्प बात

0: ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी, जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी, और बहुत दिलचस्प बातें थीं। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले। तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा।
2: ओ
1: बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
2: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
2: और क्रिएटिव है
1: जी।
2: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
2: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें?
2: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
2: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी।

0: और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी,
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं नहीं, नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी,
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
0: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
1: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले, एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त 1 साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
2: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
2: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
2: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
2: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ा इज्जत थी, नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है, हेलो फरमाइश।
2: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो,
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
2: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी,
2: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
2: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं।

0: ये सदाशिव जी की आवाज। देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी

0: हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुँचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी, वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है आपके, कोई मीम हो या कोई रील हो, कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे।
1: क्या
0: मैंने बहुत
1: बात।
0: झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफ़ी बार हम काफ़ी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग-अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
1: क्या बात रीमा जी। पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था। जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
0: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोकले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पूना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, और तब जाके मैंने राशोमान देखी, अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। आई सेड मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गए कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके
1: राइट।
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की, और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन, जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था, वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है। तो मैं एनजीओ के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था। तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना, कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं। पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन, किस्से, घटनाएं, और पापा, उनको याद दिलाया। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन

0: आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस.
1: थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी. कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले. अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए जगजीत सिंह की गाई ये गजल, जिसे लिखा है निदा फाजली ने, संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने, और एल्बम का नाम गम बड़े आते हैं।

दुनियादारी। इस फिल्म का गीत अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। विश्वेश्वर शर्मा ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत।

अनुराधा पौड़वाल और तलत अजीज की आवाजों में सुनिए इब्राहिम अश्क का लिखा ये गीत। राजेश रोशन का संगीत है, एल्बम का नाम बहार आने तक।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं अशोक खोसला की गाई ये गजल, जिसे लिखा है डॉक्टर राही मासूम रजा ने, जगजीत सिंह का संगीत।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में सुनिए कमर जलाल आबादी की ये गज़ल। धुन बनाई है जगजीत सिंह ने।

एक हमारे दोस्त थे लंदन में रहे, ऐसे बहुत पैसे आ गए उनके पास, जैसे फेंक गए ना अभी, तो वो पंजाब जब वापस गए 15-20 साल के बाद, वहाँ उन्होंने बंगला बनाया और उसकी जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी उन्होंने बुलाया सब दोस्तों को, बोले देखिए हमारा ड्राइंग रूम है, ये बच्चों का रूम है, ये किचन है, ये वो है, सब करके बड़ा अच्छा बंगला था। फिर पीछे लॉन में ले गए तो वहाँ 3 स्विमिंग पूल बना रखे हैं, तो एक में गर्म पानी, तो वो समझ आ गई बात सर्दियों में नहाने के लिए, एक में ठंडा पानी तो वो गर्मी में नहाने के लिए, तो एक खाली पड़ा हुआ है। तो उनको पूछा भी ये खाली क्यों पड़ा है स्विमिंग पूल, बोले बात यह कि कभी कभी नहाने को दिल नहीं करता है। कई वैसे पंजाबी में कई ऐसे जोक हैं जो जिनका कुछ मतलब नहीं है लेकिन हंसी आती है, जैसे मैं जगजीत सिंह हूं, ये सुरेंद्र सिंह है, अभी हंसने वाली बात नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी अपने घोड़े पे आ रहे हैं और जगजीत सिंह जी पूछते हैं उनको, सुरेंद्र सिंह जी थोड़ा घोड़ा किथे है? तो सुरेंद्र सिंह कहता भी घोड़े पे तो मैं बैठा हूं।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में अभी आपने सुनी ये गज़ल। राणा अकबर बदी का ये रचना थी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
3: जी। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम संदेश, तो पहला संदेश हमें मिला है NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
3: देश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका कृष्ट था, प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है, साथ ही साथ दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दो,
2: सिलिकॉन घाट में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
3: हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है
2: जी। धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी।
3: देवांगन है, देवांगन गेंदलाल श्रीवास संतोष अक्षी जी का
2: जी। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
3: शिक्षा प्रद, प्रेरणा प्रद और ज्ञान वर्धक होता है, होता है। ये जानकारी लाजवाब है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन नगर अमरावती से, सिद्धार्थ गोंडाने, अनाताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: प्रदेश से योगेश ठाकुर जी,
3: प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का
2: धन्यवाद के लिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
3: तो किसे कहते हैं और क्यों?
2: उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं
3: जी। कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
2: इसका साथियों, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधा है। कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी। क्लोनल का एक एक उदाहरण दीजिए।

0: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद, और क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अश्रोताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोता, सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है, कितने पैर होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगा कितने पैर होते हैं?
1: शून्य चार और हमारे ईमेल यानी iet.nic.in पर आप संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आप जानते हैं शैक्षिक कार्यक्रम
1: तो की कहानी
0: कक्षा 7 समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था, नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
3: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
4: हाँ सचमुच, हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
3: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
2: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी, लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है, नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के

0: लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा काट।
2: अरे मैंने आज पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोक, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
3: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो, इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
4: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
4: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
7: हमारे पशु पक्षी, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
8: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
5: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
8: सारी फसल बह गई।
7: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
8: सारे
7: सामान जल्दी से ऊपर ले जाना होगा।
8: चलो जल्दी ऊपर,
7: हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी, चलो
8: चलो चलो,
7: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
8: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हां साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।

0: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया। उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया। लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी। मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार। अब तो मानव करो विचार।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोकगीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा दाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।

0: जी मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची
1: हाँ
0: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ
0: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ
0: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ
0: 7-8 छत्ते तो होंगे ही।
2: अरे ओ रेवती
0: अरे सुनो तो श्यामा।
3: हाँ चाची।
0: किन्नौरी।
3: हाँ चाची।
0: और
4: हाय हाय ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी।
0: अरे सब इधर आओ जरा सुनो तो ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
4: अरे
5: क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री। वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
5: छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ छत्ते, वो भी 2-3 नहीं बड़े बड़े 7-8 छत्ते लगे हैं। हाँ
5: 7-8 छत्ते। कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
5: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो 2 गगरी फिर तो हो ही जाएगा।
1: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला और आज मिला है तो
3: चप्पर फाड़ कर।
5: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
0: हाँ ठीक है ना, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा।
2: अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज़ें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो चलो। खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें
1: जरूर।
3: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
1: ठीक रहेगा।
2: मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं।
1: अच्छा।
2: वो रास्ता छोटा लगेगा।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
2: चलो
1: ठीक है, जैसे पहुंच जाएंगे।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था,

0: अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
3: हाँ, ठीक है, मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे यार मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
3: हाँ, हाँ, हाँ,
2: बचाएंगी। हाँ, नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
3: ठीक है।
2: अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
3: क्या जंगल?
2: जल्दी आओ,
3: हमारे जंगल काट रहे हैं।
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
3: सुनो,
2: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
3: बिल्कुल
2: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
3: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
2: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
5: चिब्बू भाग ले यहां से,
6: बाद में भागने काट लेंगे।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
7: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
8: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही नहीं पेड़ को। अरे
6: क्या बात है
8: गौरा, वाह कमाल कर,
9: जीतती रहे मिट्टी जीत कर।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
10: अभी ने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अजीत
11: और विमलेश को
10: कुसुमलता
11: जगबंधु
10: चेतना
11: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
10: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से। जानिसार अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, खयाम का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हैं जानिसार अख्तर के, धुन बनाई है जयदेव ने।

और आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। गीत गाता चल इस फिल्म से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजें हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आज जयपुर में ऋण पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि ऋणों की रीप्राइसिंग से डिस्कॉम्स को हर साल ब्याज पर उल्लेखनीय बचत हो रही है। बैठक में बताया गया कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से पीक आवर्स में महंगी बिजली की खरीद पर निर्भरता कम होगी और बिजली आपूर्ति अधिक विश्वसनीय बनेगी। मुख्य सचिव ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वांगीण विकास प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करता है और इससे राष्ट्र की प्रगति को नई गति मिलती है। आज सोशल मीडिया पर संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश इस प्रेरणादायक भावना के साथ भारत की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करना, युवा पीढ़ी की रक्षा और पोषण करना और राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, समृद्धि तथा सुशासन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का निरंतर कर्तव्य है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को मजबूत करना है, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले नैतिक और इनोवेटिव अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य परिणामों और समानता में सुधार के लिए राष्ट्रीय और उभरती स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया है। वे आज नई दिल्ली में जल बजट और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी के साझा प्रयासों से ही सार्थक परिवर्तन संभव है। श्री भारद्वाज ने बताया कि मंत्रालय पिछले 1.5 साल से इस पहल पर काम कर रहा है। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी करने और अपने अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 की पहली ट्रेन आज दोपहर बाद जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत हरी झंडी दिखाएंगे। इस उपलक्ष में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित होगा। श्री कुमावत वरिष्ठ जन से मुलाकात भी करेंगे। जैसलमेर जिले में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस साल करीब 47 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वन विभाग ने अपनी नर्सरियों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार कर लिए हैं। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: जिले का सबसे बड़ा टारगेट वन विभाग का है। वन विभाग को इस बार 32.53 लाख पौधे लगाने हैं। कुल 34 विभागों को 46.95 लाख पौधे लगाने हैं। जिले के सभी नर्सरियों में वितरण के लिए 17.62 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 32 लाख पौधे अलग से तैयार है, इन्हें वन विभाग स्वयं लगाएगा। उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने सभी विभागों से अपील की है कि वे अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पौधे ले जाएं और पौधरोपण सुनिश्चित करें। मनीष यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: सवाई माधोपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायतों में वन मित्र बनाए जाएंगे। ये वन मित्र पंचायतों की बंजर, चारागाह और सिवाय चक भूमि पर लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे, साथ ही वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे। जिला प्रशासन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य हरियाली बढ़ाने के साथ ही स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है। एचपीवी टीकाकरण अभियान में 12 जिले ने एक ही दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले में शुक्रवार को एक ही दिन में 247 किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा

0: का बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। आइए सुनते हैं मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

जी हाँ, तो आप में से कई साथियों ने बिल्कुल ये गीत सही पहचाना था और ये शब्द था ज्योति। एक साथी ने लिखा है कि सच कहूँ तो सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम की वजह से हमारी बातचीत भी एक प्यारे सफ़र जैसी बन गई है। हर दिन कोई नया शब्द, कोई पुराना गीत, कोई मीठी याद और कुछ दिल से निकली बातें, यही इसकी सबसे सुंदर बात है। हम सब श्रोता मिलकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, एक परिवार की तरह से बैठकर अपनी बातें कहते हैं, उससे ही तो इसकी खूबसूरती है। और साथ में जो गीत बजते हैं वो सबसे प्यारा साथ होता है होस्ट का। जी हाँ, जब हम और आप इस तरह साथ होते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आपकी टिप्पणियाँ पढ़कर, और लगता है कि हाँ, हमारी बात सुनने वाला भी उतने ही रुचि के साथ हमसे बात कर रहा है। एक साथी ने लिखा है, हमारी इबारत पे से इन्होंने लिखा है, संवेदनाएं शब्दों में नहीं, हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी नहीं टूटता। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देते हैं और संबंधों को गरिमा देते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है, जब संवेदनाओं की बात हो रही है तो आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी याद को साझा कर सकते हैं जब आपने अपनी संवेदनाओं को पूरे हृदय से महसूस किया हो। और तब तक आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, फिल्म खामोशी से। हेमंत कुमार के ने इस गीत को गाया है, गुलजार के बोल हैं और हेमंत कुमार का संगीत।

हाँ तो भाई, किसी ने लिखा था कि पूरा गाना आखिरी तक बजाना विसिल के साथ, विसिल के तक। तो लीजिए, आपने जैसा कहा था, पूरा विसिल तक आपको गाना सुनवाया है। एक साथी ने लिखा है, जीवन में कुछ तस्वीरें समय के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती, वे यादें यादों की दीवार पर हमेशा टंगी रहती हैं। कुछ बिगड़ने, कुछ अधूरे सपने और कुछ अनकहे एहसास मन को तपाते हैं, लेकिन यही तपन इंसान को अंदर से मजबूत भी बनाती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती हैं। एक साथी ने लिखा है, ये इबारत केवल जीवन का चिंतन नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन की उस मौन यात्रा का सजीव चित्रण है, जहां संवेदनाएं ही जीवन का वास्तविक आलोक बनकर मार्ग प्रशस्त करती हैं। संबंधों का सौंदर्य अधिकार में नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में निहित होता है। जीवन में बिछड़ना, टूटना, छल और विरह जितने भी कठोर अनुभव हो, यदि वे मनुष्य की संवेदनशीलता को जीवित रखें तो वही उसके व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। स्मृतियां समय के साथ धूमिल नहीं होती, वे आत्मा की धरोहर बनकर हमें भीतर से परिपक्व करती रहती हैं। अंततः जीवन की सबसे बड़ी विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा, सत्य और प्रेम को अक्षुण्ण बनाए रखने में है। जी हाँ, और जो पिछला गीत था उसका शब्द था पुकार, और आप में से कई श्रोताओं ने इसे सही भी पहचाना। लीजिए, अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं। सरस्वती चंद्र फिल्म से मुकेश की आवाज में इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

चंदन शब्द था इस गीत से और हमारे एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं सदैव स्वभाव पर हावी होती हैं, कितने भी मन को कड़ा करें। बच्चे जब दूर कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, सब्र का बांध टूट ही जाता है। जी हाँ, इस बात को हर वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है जो किसी काम के चलते या फिर किसी मजबूरी के चलते अपने परिवार से दूर जा रहा है। और जब व्यक्ति दूर जा रहा होता है तो जाने वाले को लगता है उसका गम बड़ा है, और जो घर पे अकेला रह जाता है उसे लगता है उसका दुख बड़ा है। लेकिन सच मानिए, दोनों अपनी अपनी स्थिति में, अपनी अपनी जगह पर बड़ा दुख झेल रहे होते हैं जब वो एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं। एक साथी ने लिखा है, आज कुछ खास किस्म के गाने बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है। संबंधों की पड़ताल करते ये गीत अमर हैं, इन्हें सुनते बड़ा सुकून मिलता है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गीत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म मेरा साया से, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, मदन मोहन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, सचमुच ही मनुष्य का वक्त गुजर जाता है, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ लम्हे याद रह जाते हैं, कुछ सुकून रह जाते हैं, कुछ संवेदनशीलता होती है जो कि उम्र भर जीने की राह सिखाती है। कभी कभी उन यादों के सहारे भी रोना पड़ता है जो बीत गए हैं। उन पुरानी यादों की गलियारों से रूबरू कराती है विविध भारती परिवार। सुरीला सफर सचमुच विविध भारती का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विविध भारती परिवार सुख दुख की बातें और जीने की राह सिखाती है। विविध भारती को कोटि कोटि धन्यवाद।

ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिखते हैं, दूसरों के दुख को समझना, महसूस करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना और करुणा रखना, यही संवेदनशीलता व्यक्ति की पहचान है। संवेदना समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे को बढ़ाती है। यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। जीवन में कभी कभी अपने भी गैर लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आता है जब गैर भी अपने लगने लगते हैं। यही सच्चाई है। ये भी एक साथी ने लिखा है और ज़रूर आपको ऐसा कोई अनुभव आया होगा जिससे आप ये बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी अनजान शहर, अनजान जगह पर होते हैं तो कभी कभी कोई इस तरह मदद कर जाता है, इस तरह साथ दे जाता है कि हमें लगता है जैसे ये हमारे लिए भाई समान है, बहन समान है जिसने हमारी इतनी मदद कर दी। तभी तो हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमें ईश्वर रूप में मिल गया। ये हम तभी तो कहते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति यूं ही हमारी मदद कर जाता है, वो भी बिना किसी अपने मुनाफा के, बिना किसी लालच के। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और अभी जो गीत आपने सुना उसका शब्द था साथ। यही साथ तो है जो हमें लोगों से मिलता है, जिसके जरिए ये समाज जिंदा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गीत अनोखी रात फिल्म से, मुकेश की आवाज में, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत।

0: पागल।
1: तो साथियों, मुझे लगता है ये गीत भी आप ही की लिस्ट में से होगा। बहुत सारे लोगों ने इस गीत को भी सही पहचान लिया था। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफ़र कार्यक्रम वास्तव में सुरीला महसूस हो रहा है।

आज की इबारत में शामिल शब्दों पर आधारित गाने लाजवाब है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये लिखते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त नहीं है, सार्थकता तब है जब हम दूसरों के सुख दुख को अपनी अनुभूति से समझें, और ये संवेदना हृदय का स्पंदन है जो हमें मानवता से जोड़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि बाहरी प्रकाश यानी कि ज्ञान भी आंतरिक संवेदना रूपी दीपक से ही प्रकाशित होता है। वहीं चंदन की तरह शीतल रहकर संबंधों के मूल को समझना सहज बोध, भावनात्मक परिपक्वता और गांभीर्य का प्रतीक है, क्योंकि चंदन की प्रवृत्ति बिना भेदभाव के सुगंध देने की है। सागर अपनी विशालता और गहराई में सब कुछ समाहित कर लेता है, जो सागर की विशेषता है, जिसे हम प्रज्ञा यानी गहरी बुद्धि या स्थिरता के रूप में जाना करते हैं, जो बिना विचलित हुए रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को आंकती है। काफी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र

राई में सब कुछ समाहित कर लेता है, जो सागर की विशेषता है, जिसे हम प्रज्ञा यानी गहरी बुद्धि या स्थिरता के रूप में जाना करते हैं, जो बिना विचलित हुए रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को आंकती है। काफी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। आपको बताना है इस गीत का कौन सा वो शब्द है जिससे इस गीत को लिया गया है।

रोक नहीं पाए और चाय भी गिर गई। देखिए ऐसा मत कीजिए वरना आपकी चाय गिरने का सारा दोष विविध भारती पर आ जाएगा। आपने तो लिख ही दिया है सारे आम। एक साथी ने लिखा है जीवन में केवल, अच्छा ये कमेंट तो हमने पढ़ दिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है आत्मा का संगीत तब तक गूंजता रहता है जब तक हृदय में दूसरों के प्रति करुणा जीवित हो। हिमालय जैसी अटूट स्थिरता और नदी जैसी निश्चल आत्मीयता से किसी के मौन को पढ़ना ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। दिखावे और छल से कुछ पल की वाहवाही तो मिल सकती है मगर अंतरात्मा को कभी संतोष नहीं मिलता। इंसान अक्सर अजनबियों की भीड़ में उस एक आत्मीय स्पर्श की तलाश करता है। कुछ लम्हे वक्त के पन्नों पर धुंधले पड़ जाते हैं लेकिन उन यादों की तपिश और संघर्षों की हर एक चोट मनुष्य को भीतर से और अधिक निखार कर फौलाद बना देती है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है इस टिप्पणी को पढ़कर, सच मानिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी ही इबारत को दूसरे तरीके से लिखा गया हो, इतना मेल खाती ये टिप्पणी है। और चलिए अगले एक गीत की ओर बढ़ते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत है, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी हाँ, तो इस गीत से जो शब्द था वो था झूठ, और आप सभी ने सही पहचाना है। एक एक टिप्पणी अभी मुझे दिखी, एक श्रोता ने लिखा है कि मजाल है कोई भी गीत श्रोताओं की लिस्ट में से बच जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने कोई दूसरा चैनल ट्यून तो नहीं कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप विविध भारती ही सुन रहे हैं या कोई दूसरा चैनल आपने गलती से लगा लिया हो, क्योंकि अक्सर जो गीत हमें यहाँ पर, यानी जो कमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने सही गीत पहचाना है और वो गीत बज भी रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। एक साथी लिखते हैं, इस गीत के लिए दिल से शुक्रिया, पर हमारे घर में आज गेस्ट आए हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पर जैसे ही ये गीत बजा खुद

देखिए कितनी अच्छी बात कहता है ये गीत, इसका अर्थ कितना अच्छा है कि यदि आप बेसहारा हैं और किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जो तकलीफें आपने सही हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक साथी ने इसी तारतम्य में लिखा है कि महामारी

के समय में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उस वक्त मेरे अपने सगे मेरे साथ नहीं आए, लेकिन एक पड़ोसी मेरे साथ आया और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इसलिए कहता हूँ, कभी अपनी ही गैर होते हैं और गैर अपनी जान जोखिम में डालकर मददगार साबित होते हैं। ऐसे शख्स उम्र भर अपने रहते हैं। बिल्कुल, आपने जो अनुभव किया, ईश्वर करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में आपका उस व्यक्ति ने साथ दिया है, तो सच में लगता है मानो भगवान हमारे सामने आ गए हो, साक्षात भगवान ने ही अपने देवदूत को भेजा हो हमारे लिए। और अभी जो गीत आपने सुना था, उसका शब्द था सहारा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत चित्रलेखा फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी टूटता नहीं। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देता है, संबंधों को गरिमा देता है। एक साथी ने लिखा है, जीवन का गणित कोई समीकरण नहीं है कि जब चाहा सुलझा लिया। संवेदना का तत्व जीवन की को ज्योति देता है। जीवन तब तक अधूरा है जब तक इसमें अशांति बनी रहती है, और शांति के लिए ही इंसान तमाम प्रयास आजीवन करता रहता है। जीवन एक प्रयोगशाला है, यहाँ चंदन सी शीतलता है और अग्नि सी दाह भी। जीवन का पूरा सच केवल एक है, इसका पूरा संसार बहुत रहस्यमय है। परिस्थिति कोई भी हो, हमें बस जीते जाना है। और लीजिए, इसी के साथ सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत, भूपेंद्र की आवाज में, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: फुर्सत के।
1: किसी ने लिखा दिल शब्द है, किसी ने लिखा ढूंढता शब्द है। वाकई इस गीत में दोनों ही शब्द शामिल है, लेकिन हाँ, जिस शब्द को लेकर हमने इस गीत को चुना था वो शब्द है ढूंढता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कई साथियों ने लिखा है कि ये गाना बहुत ही शांति भरा और सुकून भरा लगता है, अच्छा लगता है, पसंद करने के लिए धन्यवाद। और अब आइए आपको सुनवाते हैं येसुदास की आवाज़ में सावन को आने दो फिल्म का गीत। फोक जामी ने इस गीत को लिखा है, राज कमल का संगीत।

तस्वीर शब्द आप सभी ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है कि हमें दुनिया से अलग गांव, यही विविध भारती का प्लेटफॉर्म जहां हम श्रोता रोज मिलते हैं। कितना प्यारा गांव है ये। जी हाँ, ये गांव ही तो है जहां हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये वो मंच है जहां हम दिल खोलकर बोल सकते हैं, और यदि कोई बात, यदि कोई नाराजगी हो, कुछ हो, तो हम यहाँ पर साझा करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। जी हाँ, यूं ही हल्की फुल्की बातों के साथ आज का सुरीला सफर अब संपन्न करने की दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल। स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
1: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की

0: जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। तस्वीर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। DN मधोक ने इस गीत को रचा है। सी रामचंद्र का संगीत।

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चित्तर की। राजकवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार।
0: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है, समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा। हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस कि नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की, क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात, या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य,
0: मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो भी कार्य हैं, तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा।
0: मैं नहीं, हमारे श्रोता जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए जी। तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार पराठों के नाम बताइए आप भी।
1: जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
0: पत्ता गोभी,
1: तो पत्ता गोभी के भी थे,
0: लौकी का पराठा भी बनता है,
1: लौकी का भी होता है,
0: प्याज का पराठा
1: जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी,
0: और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है, अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे, दो बहने का, तो फिलहाल एक गाना सुन ले हम।
1: चलिए

0: ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
3: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
2: अमदुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
4: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
2: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ोरे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
3: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
2: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
1: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी, असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी।
3: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहाँ कौन ईमानदार है, वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुवत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक

0: रोकना तो दरकिनार। मैं खुश होऊंगी, शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूं, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी, और जो ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
1: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
2: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी। 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
1: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए। बोली,
0: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ, अभी नहीं।
2: बहन क्या रात भर भी नहीं ठहरोगी?
0: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
2: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
0: अब खुद कहला दूंगी। हाँ,
2: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
0: घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
1: इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वैन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी ना था। दुआ देकर बोली,
0: कैसे हो गुरु सेवक, आज यहां ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला।
1: गुरु सेवक हंसकर बोला,
3: बजा फरमाती है भाई, उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?
0: शिकायत तो सही है, वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
3: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए।
0: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है, फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूं।
2: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
1: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।
0: नहीं नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी, लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
1: आखिर राम दुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई, रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला,
3: दीदी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है, 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
0: हाँ, राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो। देखो जरा हाथ पैर संभाल कर रहना भाई।
3: अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूं। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। आप ही बताइए, ईमान खोके पैसे मिले तो क्या।
0: सही कह रहा,
3: ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूं, और

0: आंखें किसकी बचाऊं? सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं। हां उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभालने लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे।
1: अच्छा,
0: मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था, मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 ही महीने में 250 कर दिया।
1: अच्छा,
0: आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
1: अच्छा एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है?
0: हाँ वही, मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
1: अच्छा।
2: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही ना हुए।
3: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, ये 2-4 टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी, हाँ, लेकिन अब इस घर से मतलब दिलचस्पी न रही।
2: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
3: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वहीं रह जाती, आखिर एक महराजन क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे?
2: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ ना आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी मगर उसने हमेशा यही कहा,
3: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? हाँ आप भी 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं?
2: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
4: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है।
3: तो ला कर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते? तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा, तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहाँ मिलेगी? महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है, क्या पहनूं क्या ओढूं। तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में

0: कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से।
1: ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपनी दानिश में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
2: अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं?
1: रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहाँ मिलते हैं? वो तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मालूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई, एक दूसरे के ऐब और हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती, फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाट देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिलशिकन, मायूसकून, गैर मुनसिफाना ख्यालात पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलोसोफर नहीं, तारिकुद्दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझा कर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए।
3: मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी आपने सुनी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, रामदुलारी, ममता सिंह, उमानाथ, अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दो बहने आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।
4: साथियों, आप सुन रहे थे दो बहने कहानी का भाग दो। इसकी अगली कड़ी आप सुनिएगा अगले सोमवार। और अब सुन रहे हम एक गीत
5: सुनते हैं ये गाना।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गाना था। और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है। क्या कहेंगे दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, तो अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना।
0: अब तो हमारे बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को

0: परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है, और भी कुछ लिखा है, तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया

0: देते हैं, जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है। मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह हैं, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी। अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ ना सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं। वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें।
1: बिल्कुल।
0: तो देखिए आप
1: थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं सही तरीके से
1: सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं। फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
0: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, कि कहीं पे सैर के लिए निकल जाना या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहाँ पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठा पटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित है, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पर जाइए जहाँ से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे, सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
0: और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेके बहस होने वाली थी। उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
1: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रही, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती हैं।
0: जैसे कि
1: बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खासतौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था, और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज करते हैं, चर्र चू। और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है। तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है, और किसी को बुलाकर किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए।
0: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है, जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सोख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी में दरार, नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नुकसान ज़्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर हैं उस कमरे के।
1: और हमारी एक सखी हैं जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जेल के पैकेट का उपयोग करें, या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो पोंछ देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी ही उसमें।
0: बिल्कुल सही कहा, और इन सब चीज़ों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज़्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें खासतौर पे बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल्स से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अब हम क्या कर सकते हैं,
1: गाना सुनवा सकते हैं। तो ये रहा गाना।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में
1: और तो... जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है। और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती हैं, मदद करती हैं जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो। और
0: फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए। और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखा कर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी, तो हवा लगे। जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती है।
1: और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए या नीम की सूखी पत्तियां भी, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खासतौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
0: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
1: खाना खाते हैं।
0: तो आज किस खाने की बातें करने वाले?
1: आज हम चलेंगे पंजाब की तरफ जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
0: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है
1: जी। ये अलग तरह की रेसिपी है लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए, मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसा ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दू किस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा। जो कि पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है,
0: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है
1: जी।
0: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर लें, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन अदरक प्याज हरा धनिया हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर लें, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है, तो तवे पर सेक लें। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है, पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश की व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने के, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज, गुलजार के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बताएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेहत नामा।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
2: पुरानी यादें ताज़ा हो रही है
1: जी।
2: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज़, यही आप लोगों की आवाज़ और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं नहीं सकते हैं और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
2: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
1: जी।
2: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य

0: या सीमन का पार्ट रहता है और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है।
1: जी
0: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
1: जी।
0: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
1: जी।
0: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: जी, तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है।
0: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुई कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल, तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं।
0: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
1: जी।
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
1: जी।
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
1: जी जी।
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
1: जी।
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है लेकिन तपास करनी जरूरी है
1: जी जी।
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
1: जी।
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं। उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ये ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
1: जी।

0: डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही. ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं. ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है.
1: जी,
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं,
1: जी
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है
1: जी
0: या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है.
1: जी। तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी, या क्या तरीका है?
0: राइट. पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को,
1: जी।
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सिवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है.
1: जी
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं,
1: जी
0: ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है. नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन. देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है.
1: नो
0: यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं. एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है. ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है. जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है. ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है. PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है.
1: बिल्कुल
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं.
1: जी
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स, या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं. ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है. ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं, और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी
0: है.
1: जी
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है.
1: ओके
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है. साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं.
1: जी।
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए. ये अगेन गलत बात है. खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं.
1: बिल्कुल
0: ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं.
1: जी
0: इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है.
1: जी बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। तो बेहतर है कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
0: जरूर. इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है,
1: क्या बात है,
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती
1: बिल्कुल।
0: है. ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ,
0: दो आंखें बारह हाथ.
1: क्या बात है, सुनते हैं। बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है।
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट, सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना, या तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवा से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाई रिडक्टेस इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी।
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज

0: को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
1: जी।
0: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं
1: जी हाँ।
0: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीज़ें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफ़ी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा
1: जी जी।
0: सो कुछ केसेस में हम ये स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए
1: जी।
0: पहले के ज़माने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था
1: जी।
0: आजकल दूरबीन से जिसे हम TUPR और TURP कहते हैं, जहां अंदर से ही लेज़र से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बढ़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सकें और पेशेंट को राहत दे सकें ये कोशिश रहती है
1: जी।
0: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीज़ें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं
1: जी, जी।
0: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़असर भी रहते हैं
1: जी, जी।
0: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है
1: जी।
0: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफ़ी उसका प्रचार हो रहा है
1: जी जी।
0: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि अरे हमें 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
0: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट इज क्वाइट ऑल राइट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TURP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफ़ी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज़्यादा समय तक रखनी पड़ती है
1: जी, जी।
0: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था वो अब नहीं रहा है, पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है।
1: जी जी। डॉक्टर साहब यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं।
0: ओ,
1: कौन सा गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें।
1: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज।
0: किशोर कुमार की आवाज, क्या गाना है
1: जी। सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सब को भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है. सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है. सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है.
0: जी, जी.
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है
0: जी.
1: क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से, आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं. सो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली असर करती है, और उसकी कुछ असर ज़रूर प्रोस्टेट में होती है
0: जी.
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है.
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान
1: जरूर,
0: है. तो
1: जरूर.
0: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है, और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है. स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर. कुछ चीजें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है, और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है. सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा. सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं.
0: जी जी. यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
1: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं,

0: जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए
1: जी जी।
0: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है। जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हुए के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
1: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा।
0: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है
1: जी।
0: सो हर पुरुष को मैंने बताया ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है
1: जी। और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके?
0: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहाँ इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं
1: जी हाँ।
0: कभी कभी वहाँ पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है
1: जी जी।
0: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ही बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है
1: जी। तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
0: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है
1: जी।
0: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना काफी टेंशन देती है
1: जी।
0: अब बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या हो जाती है। सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है।
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए, कौन सा गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
1: ब्लैक पेंसिल
0: काफी
1: का गाना।
0: जी हाँ जी, रोमांटिक गाना है
1: जी,
0: लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है
1: जी जी। डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे
0: तो जी,
1: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक जमाना था गाते थे
1: जी।
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूथिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है
1: जी जी।
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं
1: जी।
0: सो म्यूजिक इज वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस
1: जी जी।
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है।
1: जी, तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन

0: के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट, सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना ज़रूरी रहता है कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं
0: जी।
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे, रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज़्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज़्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना ज़रूरी हो जाता है। सो काफ़ी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेज है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं, सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी, जी।
1: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है
0: जी, जी।
1: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं, इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
0: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज़्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज़्यादा होती है या फिर?
1: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं
0: जी।
1: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफ़ी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज़्यादा यूरिन जमा होने लगता है तो धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है
0: जी।
1: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफ़ी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल
0: जी।
1: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए
0: जी।
1: सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज़ वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफ़ी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है
0: जी।
1: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफ़ी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, कि काफ़ी लोग मानते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए, सच बात है पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है
0: जी।
1: तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफिन या कॉफ़ी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना ज़रूरी हो जाता है
0: जी।
1: और आजकल काफ़ी दवाइयाँ आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज़्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा एक्सरसाइजेस ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम

डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है, रात में खास तौर से कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार

0: इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकें. सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना ज़रूरी हो जाता है.
1: जी, तो डॉक्टर साहब आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है, महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए.
0: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी ज़रूरी है.
1: जी.
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है.
1: जी.
0: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है. तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है. द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है. सो ये चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. देयर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है. सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है.
1: जी.
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना ज़रूरी है. और थर्ड, फिर ज़रूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं. वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है. इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना ज़रूरी है.
1: जी.
0: क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है.
1: जी जी.
0: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है. तो ये काफ़ी चीज़ों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं. बट ज़्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफ़ी लोगों को राहत मिल जाती है. अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, और काफ़ी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहाँ किसी को हम इसके बारे में बताएं.
1: जी,
0: ये गलत बात है. आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है.
1: बिल्कुल. अपने श्रोताओं को बता दें विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और बड़े ही जानकार डॉक्टर हैं. डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम.
0: जरूर.
1: कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना, जो दंगल मूवी में है.
1: जी.
0: बहुत अच्छा गाना है.
1: जी.
0: और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे, फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है. वो गाना अच्छा रहेगा.
1: जी, सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में. झूठ

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसकी असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयाँ ऐसे यूज़ करनी पड़ती कि जिसकी आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी, और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कभी कभी कहाँ से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है। सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं।
0: जी, इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी है कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये सही नहीं है
0: जी।
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है
0: जी।
1: हर पेशेंट, वेदर इज मैन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है
0: जी।
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है
0: जी।
1: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज

0: की मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना ज़रूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है।
1: जी बिल्कुल।
0: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ आल्सो इज वेरी इम्पोर्टेंट, एंड हेल्दी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी आल्सो।
1: बिल्कुल,
0: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं।
0: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
0: जरूर। लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं, कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता है, लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
1: ओके।
0: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी।
0: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: Okay.
0: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है। ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए, इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक ना हो जाए। सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है।
2: जी दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

श्रोता भी सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेकर आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। और आपको हमारे साथ है हमारी साथी।
1: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सभी के अपने कार्यक्रम युवाणी में। आशा करती हूँ आप सभी होंगे स्वस्थ मस्त और हमारे इस कार्यक्रम का लुत्फ जरूर उठा रहे हैं।
0: शिवादी कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ शिवादी। और हमारा जो युवाणी कार्यक्रम है ये वही कर... ये दोस्तों आपके अपने सपनों की जिसे सुनकर खोज जिसमें एक नया एंटरटेनमेंट।
1: जी बिल्कुल, तो देर किस बात की, स्वीकार करें अपने साथियों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी मैन की है तो इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं शिवादी। एक तो जो यार करते हैं कि कोई मौका मिले और के साथ मनोरंजन का आनंद ले, वहीं दूसरी प्रकार के लोग तो आप जानती होगी।
1: बिल्कुल, वहीं दूसरी प्रकार के लोग होते हैं जो इस बात का इंतजार नहीं करते कि खुशी है या गम, वे सिर्फ हंसते खिलखिलाते हुए जिंदगी को एंजॉयफुल जीते हैं।
0: हाँ, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि खुशियां और गम जीवन के दो पहलू है, कौन कब आ जाए पता चलता और हाथ में भी नहीं है तो फिर क्यों, इसलिए रहे और व्यस्त रहे
1: और पल उस ईश्वर का शुक्रिया करें हर पल जब जिसने आपको अमूल्य जीवन दिया है।
0: ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम कई बार ईश्वर का शुक्रिया करना भूल जाते हैं। हम सिर्फ ईश्वर से शिकायत कि आपने मुझे काफी कुछ नहीं दिया, बल्कि ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उसका शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। दोस्तों आज है 13 जुलाई का दिन और जुलाई का महीना तो बारिश का होना लाजमी हो जाता है, तो क्यों ना दोस्तों इस बारिश के मौसम में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो, मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।

0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आज है 13 जुलाई, आज का दिन और जुलाई का महीना है, तो बारिश होना तो लाजमी है और इस बारिश में भीगना तो एक आम बात है। लेकिन इस बारिश में भीगकर हम खुश तो हो जाते हैं, शायद हम इसमें बहुत सारी चीज़ें, यहाँ कहे तो हमारा गम भी शायद इसमें भूल जाते हैं। ज़्यादा देर भीगना शरीर को मुसीबत में डाल सकता है।
2: इसी के साथ शिवाली, बरसात के मौसम में नमी और कई सारे जो जल जमाव हो जाता है उसके कारण संक्रमण भी हो सकता है। मच्छर से फैलने वाले रोग जैसे कि डेंगू, मलेरिया और पाचन संबंधी कई सारी समस्याएं मानव शरीर में बढ़ने लगती है। इसलिए इस बारिश के मौसम में दोस्तों आप भीगते तो है ही सही, इसके साथ ही दोस्तों आप अपनी सावधानियां भी अगर ध्यान दें तो शायद आपका शरीर में किसी प्रकार का बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल साथियों,
2: इनसे बचने के लिए कई सारे दोस्तों उपाय होते हैं जो अगर आप उन्हें याद रखे तो शायद आप इस बारिश से बच सकते हैं। यानी कि जो ये बारिश हो रही है, इस बारिश में अगर आप भीगते भी है तो इसके जो दुष्प्रभाव है वहाँ आपके शरीर पर देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो आपको हमेशा स्वच्छ जल पीना चाहिए। इसके साथ ही घर के पास या छतों पर आपको पानी नहीं जमा होने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब ये पानी जमा होता है तो इसके साथ ही उसमें गंदगी जमा हो जाती है, जिसके चलते वहाँ मच्छर पनपने लगते हैं और वे मच्छर हमारे घरों में पहुँचते हैं, जिसके कारण या तो वे हमें काटते हैं या वे मच्छर या मक्खियाँ हमारे भोजन पर जब बैठती है तो कई सारे कीटाणु वे लेकर साथ आ जाती है।
1: बिल्कुल साथियों, हमेशा फिल्टर्ड वाटर का भी यूज़ हमें करना चाहिए और हमेशा अपनी याद रखें कि हमारी जो डाइट है उसमें हमें विटामिन सी से भरपूर फल, अदरक, तुलसी और हल्दी वाली जो चीज़ें हैं जिनमें होती हैं वो सब हमें उनका सेवन करना चाहिए। खाने खाते वक्त स्वच्छ जल से हाथ धोने चाहिए।
2: दोस्तों कई सारी सावधानियां हैं जो हमें और हमारे शरीर को मजबूत बना सकती है। इसके लिए दोस्तों कई बार हम सोचते हैं या बाजार के जो कई बार हम देखते हैं कि शिवादी के जंक फूड का भी हम उपयोग करते हैं, जंक फूड भी हम खाते हैं, तो उससे हमारा पेट तो भरा हुआ हमें लगता है कि हमारा पेट भर चुका है, लेकिन जो हमारे आवश्यक जो संतुलित भोजन में जो मात्राएं होती है वे पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों ये जो जंक फूड्स का आप प्रयोग कर रहे हैं इन्हें कम से कम उपयोग करें, क्योंकि बारिश के मौसम में दोस्तों हमें लगता है कि तालाब होना पसंद भी होता है शिवादी, हमें लगता भी है कि हम कुछ खा रहे हैं, तो वास्तव में हमारा टेस्ट फुल ये व्यंजन होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल
2: शिवाजी, आज के समय में हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए या ये कहें कि कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने तनाव को दूर करने के लिए कई सारे मादक पदार्थों का उपयोग भी करते हैं, जिसके चलते वे या तो अपने परिवारजनों का आर्थिक संकट में डाल देते हैं या वे भी आर्थिक संकटों का सामना करने लगते हैं, क्योंकि ये जो मादक पदार्थ सेवन यानी जो नशा करने की जो आदत होती है ये धीरे धीरे मानव शरीर को तो खोखला करती है बल्कि हमारी जेब को भी, हमारे जेब में जो बजट है उस बजट का भी या पारिवारिक बजट को बिगाड़ देती है। इसलिए दोस्तों आज के समय में जो लोग नशा कर रहे हैं उन्हें समझाने के लिए या हमारा लक्ष्य है कि इस भारत को नशा मुक्त बनाए, इसके लिए दोस्तों हम युवाओं की भी कई सारी भूमिकाएं होती है। इसमें दोस्तों हम कई सारे प्रयास करके भारत का जो नशा मुक्त होने का जो सपना है इसे साकार कर सकते हैं।
1: दोस्तों भारतीय समाज पूरे विश्व का प्रेरणा स्रोत रहा है।

0: लेकिन आज के समय में लोग यहाँ नशे की आदि होकर समाज को कमजोर कर रहे हैं। इसके लिए युवा आगे बढ़कर जागरूकता अभियान चला सकता है, नशे के दुष्प्रभावों का प्रचार प्रसार कर सकता है, डिजिटल माध्यम से मोटिवेशन मैसेज दे सकते हैं, अपने दोस्त और साथियों को नशे की लत से दूर रहने के लिए भी हम प्रेरित कर सकते हैं। नशे से हटाकर लोगों को खेल, योग और ध्यान जैसी स्वास्थ्य जीवन शैली की ओर आकर्षित भी हम कर सकते हैं।
1: शिवाजी, आज के समय में हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति मौजूद है जो नशा करता है, तो वास्तव में हम उनके दुष्परिणाम या उनके परिवार में जो आर्थिक संकट पड़ रहा है उसका नतीजा देख ही लेते हैं। शिवाजी, आज के समय में जो लोग नशा कर रहे हैं, अगर कोई आपको मिल जाता है तो आप उनके साथ किस तरीके से समझाइश करेगी?
0: बिल्कुल, हम उन्हें सबसे पहले तो कि इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में हम उन्हें सब कुछ बताएंगे कि किस तरह से शायद ही नशा करना या कुछ ऐसी चीज ये एक बार दो बार अच्छी लग सकती है और उसके बाद उसकी लत लगेगी और लत लगने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को जो है नुकसान देगी। तो इसका सिर्फ एक बार सेवन ही हमें सबसे पहले लत लगाएगा, उसके बाद हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला करता जाएगा।
1: शिवाजी, वास्तव में ये बात सही है, क्योंकि आज के समय में जहाँ तक हम देखते हैं कि जो लोग जिनको जानकारी नहीं थी अगर वे नशा कर रहे थे या वे लत में लग चुके हैं तो शायद हो सकता है कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन आज के युवाओं ने भी इसे एक लाइफ स्टाइल के रूप में चुन लिया है। आज के समय में कुछ कोई बर्थडे पार्टी हो या कोई मैरिज पार्टी हो, वहाँ पर भी जो लोग हैं वे नशा करने से दूर नहीं रहते और इसके चलते कई बार वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी देखने को हमें मिलते हैं। और शिवाजी, इससे एक तो हमारा जो जेब खर्चे है वहाँ तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ ही हमारे रिश्तों में भी खटास सी आ रही है। इसके लिए दोस्तों हमें प्रयास करना चाहिए कि जो चीज़ें हमें नुकसान पहुँचा रही है या हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं उन पर जो संकट आ रहा है, तो क्यों ना हम इनसे दूर हो जाएं। इससे दोस्तों हमारे समाज में भी एक नया संदेश पहुंचेगा। और दोस्तों, अगर आपको भी इस आदत ने जकड़ा हुआ है तो आप दोस्तों प्रयास करिए, धीरे धीरे आपका ये प्रयास जरूर सार्थक सिद्ध होगा। और आप भले ही अचानक ना सही, लेकिन धीरे धीरे अगर इस आदत को छोड़ना चाहेंगे तो एक दिन ये आदत जरूर आपसे छूट जाएगी और दोस्तों इससे आपको फायदे ही फायदे महसूस होंगे। शिवाजी, क्यों ना ले चले हम हमारे साथियों को मनोरंजन की दुनिया में, सुनाते हैं ये प्यारा गीत।

0: शिवादी राजस्थान के बारे में तो आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि राजस्थान की तो बात ही निराली है, और वास्तव में यहाँ की बात निराली भी है, क्योंकि हमारा जो राजस्थान राज्य है यह न केवल भारत देश में बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक खास पहचान रखता है। शिवादी जब हम देखते हैं कहीं किसी मेले में या जो भी कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर जब हम विदेशी पर्यटक देखते हैं तो वास्तव में हमारा दिल भी गर्व से, खुशी से, और जो कहते हैं ना कि खुशियों से भरा हो जाता है। हमें
1: बिल्कुल
0: लगता है कि वास्तव में हमारे राजस्थान में कुछ तो खास है।
1: बिल्कुल। इसीलिए श्रोताओं, हमने ये भी सुना है कहते हुए कई लोगों को कि यहाँ का खान पान, वेशभूषा, लोक संस्कृति, हर कोई अपनी एक खास पहचान रखता है।
0: इसीलिए तो लोग शिवादी यहाँ देखने आते हैं, यहाँ की संस्कृति से रूबरू होते हैं, और वे वास्तव में इसी संस्कृति में जब वे रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों ना हम भी इसी संस्कृति में रहकर कुछ दिन बिताए
1: बिल्कुल
0: जाए। जब हम जाते हैं राजस्थान की ओर, तो या ये कहें कि जब राजस्थान में रहते हैं रेगिस्तान की ओर जाते हैं, तो वहाँ की जो वेशभूषा है तो वे पर्यटक लोग भी उसी प्रकार की वेशभूषा अपनाने लगते हैं। और दोस्तों, राजस्थान की तो जितनी बात की जाए उतनी कम ही है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारे झालावाड़ जिले में मौजूद हमारे गागरौन दुर्ग के बारे में। हालांकि गागरौन दुर्ग के बारे में दोस्तों हम बात करें, और मानो आप झालावाड़ वासियों को अगर हम गागरौन दुर्ग के बारे में कुछ जानकारी दें, तो शायद ये ऐसा ही होगा जाने हम सूर्य को आईना दिखा रहे हो, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: दोस्तों ये जानकारी शायद आपको जरूर होगी, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं उस जानकारी को आप तक पहुंचाने की जिससे शायद आप आज तक अपरिचित होंगे। क्योंकि दोस्तों गागरौन दुर्ग एक न केवल दुर्ग है बल्कि यहाँ विश्व में मौजूद एक ऐसा दुर्ग है जो बिना किसी नींव के सीधी चट्टान पर खड़ा हुआ है, और जो अपनी प्राकृतिक और अभेद्य, यानी जिसे भेदा नहीं जा सकता, ऐसी सुरक्षा के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है।
1: बिल्कुल साथियों, ये सबसे बड़ी बात यदि हम करें इस दुर्ग की, तो ये जो दुर्ग है ये तीन तरफ से आहू और कालीसिंध नदी के पानी से घिरा है। वहीं चौथी तरफ इसकी गहराई खाई है, इसलिए दुश्मनों का इस पर आक्रमण करना मुश्किल हो जाता था। इसे धूलरगढ़ और डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता था।
0: दोस्तों आपको मालूम होगा कि यहाँ महान संत एवं सूफी मीठे शाह यानी हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह मौजूद है। वहीं किले के दूसरी ओर हम देखें तो संत पीपा जी की जन्मस्थली भी यहाँ पर मौजूद है।
1: साथियों, इस दुर्ग ने कई लड़ाइयां भी देखी जिसने अचलदास खींची के समय हुए, जौहर आज भी इतिहास के पन्नों में अंकित हैं। यह दुर्ग न केवल स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से आज भी अपनी एक विशेष पहचान रखता है। जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर मौजूद इस दुर्ग के कई लोग देखने जाते हैं।
0: शिवाजी कई बार जब हम बाहर जाते हैं या कई सारे जब लोगों से रूबरू होते हैं या उनसे मिलते हैं, तो शिवाजी हमें भी, हाँ, जब हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ की अगर जो संस्कृति है या स्थापत्य कला है वहाँ, उसके बारे में अगर हमें पूर्ण रूप से जानकारी होगी तो शायद हम भी उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं कि क्यों

0: ना आप भी हमारे झालावाड़ आइए, यहाँ का जो मौजूद दुर्ग है आप इसे देखिए, वास्तव में देखकर आप ओतप्रोत हो जाएंगे। तो वे वास्तव में फिर एक उत्सुक होंगे कि क्यों ना हमें भी एक बार वहाँ चलकर देखना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: शिवाजी, कई बार हम सोचते तो हैं कि हमारे जो हमारा जिला है, झालावाड़ जिला है, अगर पर्यटन की दृष्टि से कहीं अगर पिछड़ा हुआ हमें नज़र आता है, तो दोस्तों हमें भी प्रयास करना चाहिए। सरकार ही हमारा एक तरीके से प्रयास कर रही है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वे भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम आम व्यक्ति इसके बारे में जागरूक नहीं होंगे, तब तक यह पर्यटन हम आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। हालांकि दोस्तों आज के समय में हमारे झालावाड़ जिले ने भी एक विशेष पहचान बनाई है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करें तो धीरे धीरे यह प्रयास हमारा जरूर सफल होगा। शिवाजी, आज के समय में झालावाड़ जिले में गागरौन दुर्ग के अलावा भी कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे साथी जा सकते हैं। और
1: बिल्कुल
0: शिवाजी, आज के समय में कई बार हम सोचते हैं कि कुछ चंद दिनों की अगर छुट्टियाँ हमारे जो वर्क प्लेस हैं वहाँ से मिल जाती है, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना बाहर का एक प्लान टूर बनाया जाए, लेकिन हम यह सोचना भूल जाते हैं कि क्यों ना हम अगर हम राजस्थान में ही रहकर राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू हो, तो शायद ही हमारे लिए कितना अच्छा होगा।
1: बिल्कुल
0: उसके लिए हम कई सारे जो राजस्थान में मौजूद जो पर्यटन स्थल है, अगर दोस्तों हम वहाँ जाएंगे, कई सारे अभयारण्य भी मौजूद है, अगर हम वहाँ की सैर करेंगे, तो वास्तव में ये हमारे लिए खुशनुमा यादगार पल बन जाएगा। और दोस्तों इससे फ़ायदा भी होगा, और हमारे राजस्थान वासी है, या जो हमारे अगर हम देश में, भारत देश में कहीं घूमने जाते हैं, तो इससे जो हमारी जो भारतीय मुद्रा है वह भी बचेगी दोस्तों, और वह कहीं ना कहीं देश के विकास में जरूर काम आएगी। एक छोटा सा प्रयास ही दोस्तों एक सफलता का कारण बन जाता है, इसलिए आप दोस्तों ऐसे छोटे छोटे प्रयास कर कर अगर आप सोशल मीडिया पर कोई इन्फ्लुएंसर है, तो आप वहाँ प्रयास करें कि क्यों ना डिजिटल रूप से भी हम हमारे झालावाड़ जिले की, राजस्थान राज्य की, या भारत देश की एक विशेष पहचान बनाएं, ताकि जहाँ भी देखे बस इस भारत देश का जलवा नज़र आता रहे।
1: बिल्कुल

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, प्रत्येक कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं किसी नए साथी से जिन्होंने किसी एक नए क्षेत्र में अपना नाम किया है। और आज के इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम चिराग जल रहे युवा डायरी सेगमेंट में लेकर आए हैं आपसे सीईटी एग्जाम पर संजना सिंह से शिवादी जी की बातचीत। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये बातचीत और उम्मीद करते हैं बातचीत का ये क्रम आपको जरूर पसंद आएगा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए एक भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता में शामिल है हमारी युवा दोस्त संजना सिंह। आज हमने करी है इनसे ढेर सारी बातचीत। सबसे पहले हम जानेंगे इनसे इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में, ये अभी क्या कर रही हैं, और जानेंगे इनके ढेर सारे विचार और करेंगे इनसे ढेर सारी बातचीत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संजना जी, आपको मेरा और हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में।
3: मेरा नाम संजना सिंह है, मैं बरेली से हूँ और मेरी अभी बीए चल रही है। मेरे पापा किसान हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मैं और एक मेरी छोटी बहन है।
2: जी, तो अभी जैसा कि आपने कहा, अभी आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ और भी कुछ कर रही हैं या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन ही कर रही हैं?
3: हाँ, मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं अभी सीईटी की तैयारी कर रही हूँ, 12th लेवल वाली और ग्रेजुएशन लेवल वाली भी, क्योंकि मेरी अभी फाइनल ईयर चल रहा है तो ग्रेजुएशन वाली की भी तैयारी कर रही हूँ।
2: अरे वाह, क्या बात है। तो अभी संजना जी, हमारे कई युवा श्रोता ऐसे होंगे जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे सीईटी की, तो शायद अगर आप अपना स्केड्यूल, अपनी टिप्स वगैरह उनसे शेयर करें तो क्या पता हमारे श्रोताओं के लिए वो बहुत ज़्यादा मददगार हो। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि सीईटी वैसे

0: क्या, और इसमें क्या सिलेबस होता है, आपकी प्रिपरेशन क्या है, हम इन सभी चीजों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे।
1: सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, राजस्थान सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए यह एक कॉमन एग्जाम है। इसका फायदा है कि एक बार सीईटी पास करने के बाद 3 साल तक आप अलग अलग भर्तियों के लिए डायरेक्ट मेंस दे सकते हो, इसलिए टाइम और पैसे दोनों की बचत होती है।
0: बिल्कुल, आपने ये तो सही कहा, और ये बड़ी ही अच्छी पहल लगी मुझे सरकार की कि अगर हम सीईटी क्लियर कर लेते हैं तो फिर जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उन सभी भर्तियों में हमको सिर्फ मेंस ही देना होगा या जो भी उनका अलग से क्राइटेरिया होता है। सीईटी क्लियर करने के बाद एक तो सबसे पहले हमारे बहुत सारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाता है, प्लस हमें कई चीज़ों की जानकारी भी अच्छे से हो जाती है।
2: तो हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि आपने सीईटी की तैयारी कब और कैसे शुरू की।
1: मैंने तैयारी पिछले साल सितंबर से शुरू की थी। पहले मैंने सिलेबस को 3 बार पढ़ा, फिर सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाया। घर पर ही कुछ अच्छी बुक्स से पढ़ाई करती हूँ।
2: अरे वाह, तो संजना जी, ये सीईटी का जो सिलेबस है वो क्या है, इसके कितने पेपर होते हैं, आप हमें बताइए।
1: सीईटी के 2 लेवल होते हैं, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। दोनों में 5 सब्जेक्ट होते हैं, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर। टोटल 150 क्वेश्चन, 300 नंबर, 3 घंटे का पेपर होता है।
2: अरे वाह, बेसिकली इसका जो सिलेबस है वो मुझे पूरा ही कवर होता हुआ दिख रहा है। मतलब जिस बच्चे ने सीईटी की तैयारी कर ली उसकी आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जैसा अभी आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स बताए, तो हर इंसान का एक फेवरेट और एक टिपिकल सब्जेक्ट होता है, तो आपको सबसे ज़्यादा टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता है, या कहें तो थोड़ी मुश्किल होती है उसे पढ़ने में, और फिर आप उसकी तैयारी कैसे करती हैं?
1: मुझे शुरू में राजस्थान जीके सबसे मुश्किल लगता था, इसलिए मैंने रोज़ 30 मिनट करंट अफेयर और राजस्थान के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृति पढ़ती हूँ। RS अग्रवाल से रीजनिंग और मैथ से प्रैक्टिस करती हूँ।
2: अरे वाह, हाँ, प्रैक्टिस जो है वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस सही से करते हैं और रोज करते हैं तो एक जो डिसिप्लिन बना होता है तो चीज़ें तो थोड़ी आसान हो ही जाती है और हमें समझने भी अच्छे से आ जाती है। तो ज़रा आप अपने स्केड्यूल के बारे में बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती हैं और आपका टाइम टेबल क्या है।
1: मैं रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ती हूँ। सुबह 2 घंटे मैथ्स रीजनिंग, दोपहर में जीके और रात को 1 घंटा मॉक टेस्ट, संडे को फुल लेंथ पेपर देती
2: हूँ। जैसा आपने कहा कि आप मॉक टेस्ट भी देती हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर जो ये क्वेश्चंस आप देती हैं ये क्यों ज़रूरी हैं और इन्हें क्यों देना ज़रूरी है?
1: बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती हैं। मैं अब तक 40 प्लस मॉक दे चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर 2 बार सॉल्व किए हैं। इसे पता चलता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न के आते हैं।
2: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारी तैयारी भी बताते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट किस सब्जेक्ट का वीक है और हमारी स्ट्रेंथ भी क्या है। चलिए हम हमारी भेंटवार्ता को समाप्त करते हैं और आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं कि आप हमारे युवानी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे।
1: मैं अपने युवा श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि बस यही कि सपना बड़ा रखो और मेहनत छोटी मत करो, रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, माँ पापा का नाम रोशन करो। सीईटी आसान है अगर लगातार किया जाए तो।
2: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनमोल समय देने के लिए।
1: धन्यवाद मैम।
3: दोस्तों, अभी आपने सुना सीईटी एग्ज़ाम पर संजना सिंह जी से शिवादी की बातचीत, और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बातचीत का एक क्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, आज के समय में हम कई बार बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की शायद जो मेहनत है वह ही पूरी नहीं कर पाते हैं, और फिर से जब हम असफल होते हैं तो निराशा से भर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस निराशा को हटाकर क्यों ना हमें सोच लेना चाहिए कि शायद हमारी मेहनत में ही कुछ कमी रह गई है। क्यों ना हम अपनी असफलता का दोष किसी और को देकर हम अपनी इस असफलता के पीछे अपना जो हमारी जो कमी है उसको ढूंढ ही नहीं पाते, बल्कि दोस्तों हमें प्रयास कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि शायद हमारी जो मेहनत है इसमें कहीं ना कुछ तो कमी रही ही है। क्योंकि दोस्तों, जो लोग सफल हुए हैं शायद उन्होंने भी हमसे अधिक मेहनत की है, और उसी मेहनत का परिणाम है कि वे आज सफल हो पाए हैं। इसलिए दोस्तों, जो लोग सफल हुए हैं उन्हें हम शुभकामनाएं देकर फिर से हमें लग जाना चाहिए अपनी नई तैयारी की ओर, और अपनी प्रिपरेशन को जितना समय हमने पहले दिया दिया था उससे दो गुना समय देकर हमें फिर से प्रयास करना चाहिए और

लेना चाहिए कि हमें सफल होकर ही इस दुनिया को दिखाना है, क्योंकि आज के समय में जो लोग हमें कह रहे हैं कि ये आपसे नहीं होगा, वे जरूर कहेंगे कि मुझे मालूम था कि आप ये सब कुछ कर दिखाएंगे। खैर दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये जीवन में हम याद रख लें तो शायद असफलता हमें कभी रोक ही नहीं पाएगी। हालांकि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू है, एक कभी मिल जाता है तो दूसरा कभी किस वक्त हमारे सामने हो हमें पता ही नहीं चलता। खैर दोस्तों, अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत

0: दोस्तों, गीत के बाद फिर से स्वागत करते हैं आपका और उम्मीद करते हैं आपको ये गीत भी पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारी सरकारें या कहें कि हमारी जो गवर्नमेंट्स है वहाँ प्रयासरत है कि धीरे धीरे हम जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं इन्हें इस तरह की सुविधा दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति वंचित नहीं रह पाए और हर व्यक्ति को जो आम सुविधाएं हैं वहाँ आसानी से मिल पाए। इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट्स है वहाँ प्रयासरत होती है और कई सारी ऐसी योजनाएँ चलाती है जिनकी जानकारी अगर हमें मिल जाए तो शायद ही हमारा जीवन और अधिक आसान हो सकता है। लेकिन जानकारी के अभाव में दोस्तों, कई बार हम इन योजनाओं का फायदा ही नहीं उठा पाते, जिसके चलते हम इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारा आकाशवाणी झालावाड़ का परिवार प्रयास करता है कि इन योजनाओं की जानकारी आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर पहुंच जाए। तो आज इन जानकारियों में दोस्तों हमने शामिल किया है पीएम सूरीघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानकारी। दोस्तों, पीएम सूरीघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आप जानते ही होंगे और दोस्तों अगर आप नहीं भी जानते हैं तो दोस्तों इन योजनाओं का जो कार्यशैली है वहाँ आपको जब आप अपनी जो छत है यानी रूफ पर जाकर जब आप देखते हैं तो आपको हर जगह सोलर प्लेटें आज के समय में देखने को मिल ही जाती है। और दोस्तों, ये सोलर प्लेट्स जो आप देख रहे हैं ये शायद पीएम सूरीघर मुफ्त बिजली योजना का ही एक परिणाम है और यह साबित करती है कि ये योजनाएं धरातल तक पहुंच भी पा रही है।
1: बिल्कुल साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बैंक खाते में 78,000 रुपीज तक की केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसमें 1 किलोवाट तक आपको 30,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। यदि आप 2 किलोवाट का सिस्टम ऑपरेट करवाते हैं तो उस पर 60,000 रुपीज़ की धनराशि दी जाती है और 3 किलोवाट पर या उससे अधिक की क्षमता रखने वाले सोलर पैनल्स के सिस्टम पर 78,000 तक की सब्सिडी आपके बैंक खाते में डाल दी जाती है।
0: दोस्तों, ये पीएम सूरीघर मुफ्त बिजली योजना का ही परिणाम है कि दोस्तों हमारा जो बिजली का जो सपना है, कई बार दोस्तों कई सारे जो ग्रामीण लोग थे या ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उन तक बिजली पहुंचाना मुश्किल हो जाए या करता था, क्योंकि दोस्तों आज के समय में जो थर्मल यूनिट्स है हमारे भारत देश में वे शायद इतनी नहीं है कि वे इतना कोयला उत्पादन कर वे इतनी बिजली उत्पादन कर पाए कि जिससे हम जो नागरिक है भारत देश के नागरिक उन तक पर्याप्त बिजली पहुंच पाए। इसी से या इसी का परिणाम देखते हुए हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि क्यों ना हम इन सोलर पैनल्स की ओर आगे बढ़ें और इन पैनल्स को इस तरीके से लगाएं ताकि ना तो गवर्नमेंट का किसी प्रकार का जो उनका बजट है वहाँ भी बिगड़ पाए और ना ही उनकी किसी प्रकार के कोई भी उन पर वित्तीय बोझ बढ़े।
1: बिल्कुल सही।
0: इसके लिए हमारी सरकारों ने प्रयास किया है कि क्यों ना हम सब्सिडी के रूप में कुछ प्रोत्साहन राशि जो भी व्यक्ति अपना घर पर सोलर पैनल लगा रहा है उन्हें प्रदान करें ताकि वे जो इस जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं उससे उन्हें फायदा भी मिले और उनका यह कार्य आसान भी हो जाए। इसके लिए दोस्तों आज के समय में जो बिजली है उन यूनिट्स को बचाने के लिए आज के समय में हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वहाँ भी कई तरीके के आने लगे हैं। इसमें आज के समय में हाइब्रिड सोलर पैनल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी है ताकि लोगों को ऑन ग्रिड के समय जो भी बिजली उत्पादन होती है वह बिजली विभाग तक पहुंचा दी जाती है। उसके बाद दोस्तों आपका जो उपयोग होता है उस अनुसार उस बिजली को काउंटिंग करके जो शेष बची बिजली होती है वह आपके खाते में जमा कर दी जाती है, जिसे आप वक्त बे वक्त जब आपका बिजली लोड बढ़ता है उस समय आप उस बिजली का उपयोग करके अपनी जो ऊर्जा बचत है उसको उपयोग में ले सकते हैं और आप पर आर्थिक नुकसान भी नहीं होता है।
1: साथियों, इसमें आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पीएम सूर्य घर पोर्टल है और आवेदन करते वक्त आपको कई दस्तावेजों की आवश्यकता लगेगी, तो उसमें हम बात करें तो आधार कार्ड, नवीनतम

0: बिजली बिल, बैंक खाते की पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पीपीएल आधार कार्ड धारक के लिए भी ये है।
1: शिवाजी, कई बार होता है कि कई सारे जो दोस्त होते हैं वे अपना आय प्रमाण पत्र रखते हैं, लेकिन इस योजना में हमारे साथियों को बता दें कि बीपीएल कार्ड धारक के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक हो जाता है ताकि आप इस योजना का लाभ ले पाए। इसके साथ ही दोस्तों, आपके पास डॉक्यूमेंट्स के रूप में एक पासपोर्ट साइज फोटो भी होने चाहिए।
0: बिल्कुल, मोबाइल नंबर और सोनार पैनल लगाने हेतु आपके पास पर्याप्त जगह भी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक
1: शिवाजी,
0: है।
1: जैसा कि आपने बताया कि मोबाइल नंबर, दोस्तों मोबाइल नंबर वे ही इस योजना में पात्र माने जाते हैं जो आपके बिजली बिल के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पास अगर इतना पैसा नहीं है कि वे सोलर पैनल का अतिरिक्त खर्च उठा पाए, इसके लिए भी हमारी जो सरकार है उन्होंने एक काफ़ी हमारे दोस्तों को सहायता देने के लिए लोन का भी एक ऑप्शन इसमें दिया है। इसके लिए जो जो भी आप सोलर पैनल लगा रहे हैं, उस पैनल की सब्सिडी के बाद जो भी राशि बचती है, आप उसे किसी भी बैंक से, अपनी नज़दीकी बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं। इसके लिए आपको अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाता है, वह भी सोलर पैनल के नाम पर। और दोस्तों, आपको जानकर शायद खुशी होगी कि इसमें ब्याज दर भी काफी न्यूनतम है और इसकी प्रक्रिया भी, यानी लोन प्रोसेस भी काफी आसान है। इसके लिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं या आपका बिजली बिल भी काफी आता है, तो आप प्रयास करके, और अगर आपके पास इतनी सोलर पैनल लगाने की जगह मौजूद है, तो दोस्तों आप भी सरकार के, जो हमारी गवर्नमेंट्स है, उनके साथ चलिए और एक सोलर पैनल अपने जो दीवार है या अपनी जो छत है उन पर लगा सकते हैं। शिवाजी, कई सारे दोस्त सोलर पैनल तो लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें शिकायत होती है कि उनका सोलर पैनल उतना बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहा है जितनी उन्हें आवश्यकता है। तो इसके लिए शिवाजी, उन्हें, हमारे दोस्तों को ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों समय समय पर हमारे सोलर पैनल की सफाई भी करते रहना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि सोलर पैनल लगाकर कई सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों सोलर पैनल की सबसे पहली बात होती है कि वह जब ही आपका बिजली उत्पादन कर पाएगी, जब आप उसकी समय समय पर सफाई करते रहे। इसके लिए आप समय समय पर उन्हें पानी से धोते रहे, पैनल्स जो हैं आपके। इसके साथ ही दोस्तों, आप उनकी जो सफाई कर रहे हैं उस समय आप ये भी बात ध्यान रखें कि उन पर किसी प्रकार के स्क्रैचेस ना आए, क्योंकि दोस्तों अधिक स्क्रैचेस से आपकी जो बिजली बिल, जो बिजली बनाने की जो क्षमता है वह कम हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपने सोलर पैनल लगाया है, तो आप इसकी मजबूती का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार दोस्तों हम कम कीमत के चलते कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार करवा लेते हैं जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। जो बारिश आते हैं या कुछ हवाएं चलने पर वे सोलर पैनल उड़ जाते हैं, जिससे हमें आर्थिक क्षति होने लगती है। तो दोस्तों, छोटी छोटी सामान्य सी बातें हैं जो अगर आप ध्यान रखें तो शायद आपके साथ कोई ठगी भी नहीं होगी, और आपने जो सोलर पैनल यानी बिजली बनाने का जो सपना सोचा है वह भी साकार हो पाएगा, वो भी लंबे समय के लिए। इसलिए दोस्तों, आप भी अगर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो आप पीएम सूर्यघर पोर्टल पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ई मित्र पर भी जाकर इसका आवेदन करें और जल्द से जल्द इस सोलर पैनल को लगाकर अपने जो सोलर बनाने, जो बिजली बनाने का सपना है, इसे साकार कर सकते हैं।

दोस्तों हर दिन होता है खास, तब ही बन जाता है उसका कुछ ना कुछ इतिहास। दोस्तों अब समय हो गया है आपको आज के इतिहास से अवगत कराने का।

दोस्तों आज ही के दिन हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय जी का जन्म सन 1932 में हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर जी का जन्म आज ही के दिन 1892 में हुआ था। दोस्तों घड़ी की

0: सुइयाँ भी कर रही है इशारा कि वक्त समाप्त होने लगा है हमारा। लेकिन दोस्तों, नए कार्यक्रम में नई उम्मीदें, नई आशाएं लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपके दोस्त दुर्गेश कारपेंटर
1: और आपकी रेडियो दोस्त शिवाधी को
0: दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवावाणी। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आइए अब आपको शेष रहे कार्यक्रमों से अवगत करा दें।

अब से थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 6:28 पर आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ योगी जिले की चिट्ठी, इन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 7 बजे हमारे किसान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा कृषक चौपाल। इसमें चर्चा का विषय रहेगा जीवामृत निर्माण एवं उपयोग। भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी, विषय रहेगा मक्का और ज्वार में खरपतवार कीट एवं रोग नियंत्रण। इसमें बातचीत होगी प्रगतिशील किसान अभिषेक पाटीदार ग्राम ओसारा से। मंगला पशु योजना पर जानकारी की बातें होंगी और साथ ही किसान साथी सुनेंगे मौसम, बाजार भाव, समर्थन मूल्य और कल के कार्यक्रम की झलक।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर, इन्हें हम मुंबई से रिले करेंगे। 8:15 पर सुनिएगा हमारे केंद्र से फिल्म संगीत।

गैर फिल्मी गीत गजल और भजन का आनंद लीजिएगा सब रस के कार्यक्रम में प्रतिदिन की तरह रात 9 बजे। ये थी शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों

0: व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं फिल्म उपकार में मन्ना डे का गाया ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और आइए सुनते हैं प्रदीप की आवाज में फिल्म नागमणि का ये गीत।

मोहम्मद रफी से आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। ये गीत है फिल्म वक्त से।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। 6:28 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही होगी जिले की चिट्ठी। इन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: காண்டு
1: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।

साहित्य, नाटक, झलकी, ज्ञान विज्ञान, खेल, स्वास्थ्य और मनोरंजन का खजाना आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी जयपुर का आमेर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वर्ष 2030 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पंचायतवार प्रभावी निगरानी पर जोर दिया। आरजीएचएस में नई व्यवस्था आज से लागू, मरीज 2000 रुपए तक की जांच सीधे करवा सकेंगे। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर जयपुर में बैठक हुई। और राज्य में मॉनसून का पहला दौर थमने के बाद गर्मी और उमस का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायतवार प्रभावी निगरानी किए जाने का निर्देश दिए हैं। श्री बागड़े आज लोक भवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गांवों को टीबी मुक्त करने के लिए ग्राम सेवकों की जवाबदेही पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि टीबी को आंकड़ों में नहीं बल्कि व्यवहार में हरेक मरीज पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे टीबी को पूरी तरह खत्म किया जा सके। राज्यपाल ने टीबी रोगियों को निक्षय मित्र किट भी वितरित किए। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य को 2030 तक पूरी तरह टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभियान का 90% लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। अधिक जोखिम वाले 11,000 से ज्यादा गांवों का सर्वे किया गया है। इनमें से 9,000 से ज्यादा गांवों में विशेष शिविर लगाकर टीबी मुक्त राजस्थान के लिए कार्यवाही की गई है। श्री खींवसर ने बताया कि राजस्थान में देश में सबसे अधिक एक्सरे स्क्रीनिंग की गई है। राज्य के एनएचएम निदेशक जोगाराम ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान चालू किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में जांच के लिए नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। इसके तहत 2000 रुपए तक की जांच के लिए पहले से मंजूरी नहीं लेनी होगी। वहीं तत्काल जांच के मामलों में टीपीए को 1 घंटे के अंदर और सामान्य मामलों में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी। तय समय सीमा में कोई निर्णय नहीं होने पर आवेदन को ऑटो अप्रूव्ड यानी स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। वहीं आपातकालीन मामलों में पहले की तरह किसी भी तरह की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि टीपीए का मुख्य काम मरीजों के कैशलेस इलाज और बीमा दावों की प्रक्रिया को संभालना है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए ही अस्पताल के साथ मिलकर इसका अनुमोदन करता है। सरकार ने आरजीएचएस से सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को इसकी कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं। देश भर में जुलाई माह को अंगदान जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी आम लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन सोटो से जुड़े डॉक्टर धर्मेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अंगदान से जुड़ी भ्रांतियां दूर की जा रही हैं।
1: हम आम जन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रेन डेथ के बाद में अगर उनमें से

0: 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
1: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज सिरोही जिले के आबू रोड पहुंचे। उन्होंने मानपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। श्री अठावले ने सद्भाव और सामाजिक समरसता को आज के समय की जरूरत

0: रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
1: एमएसएमई के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। किसानों की जो फसल है इस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा प्रभाव मिले उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। अब किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और जो जो बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजनाएं आती है तो उनको पूरी मदद करने का हमारी सरकार की तरफ से होगा।
0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली विशेष रेलगाड़ी आज राजधानी के जयपुर स्थित दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ी तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम और मदुरै लेकर जाएगी। इस मौके पर श्री कुमावत ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए यात्रा के दौरान अधिकारी, डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो देख सकते हैं। प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने सहित अन्य विषयों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ऋण पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आधुनिक तकनीक के उपयोग और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली के भंडारण के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण है। इससे पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होगी और डिस्कॉम को हर साल बचत होगी। इसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बुकारामंगा में हुई इस प्रतियोगिता में कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर भारतीय टीम के सभी प्रतिभागियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने इसे देश की युवा शक्ति का विज्ञान के प्रति जुनून बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी देश का गौरव बढ़ाने वाले इन प्रतिभाशाली युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राज्य में मॉनसून का पहला दौर थमने के साथ ही गर्मी और उमस का असर फिर से बढ़ गया है। अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिन के साथ ही रात में भी उमस बनी हुई है। फलौदी में कल पारा 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर और अलवर में भी दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। उधर हनुमानगढ़ में तेज गर्मी और उमस के बीच आज दोपहर बाद मौसम बदला और कुछ देर अंधड़ के साथ झमाझम बरसात हुई। सिरोही में बूंदाबांदी हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी आबू राज की सुंदर वादियों का आनंद ले रहे हैं।
2: सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। पहाड़ियों पर छाए बादल, धुंध से ढकी वादियां और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पर्यटक नक्की झील में नौकायान का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: मौसम विभाग ने 15 जुलाई के बाद मॉनसून का नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके बाद 2-3 दिन में कमजोर पड़े मॉनसून के फिर से रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। आज राजधानी जयपुर और भरतपुर संभाग के 9 जिलों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2-3 दिन में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्र में हल्की बरसात का पूर्वानुमान है। जोधपुर और बीकानेर में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कल जयपुर में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन

0: किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि ये वेबिनार प्रदेश भर के सभी पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानों के लिए होगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचारों और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर मंथन किया जाएगा। जयपुर शहर में ट्रैफिक प्रबंधन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के साथ नई शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत जल्द ही सिग्नल का फिक्स टाइमर बंद होगा और सड़कों पर लाइव ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल अपने आप बदलेगा। न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट।
1: 24 घंटे काम करने वाली एआई आधारित ये व्यवस्था पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 39 दिनों तक इसका ट्रायल रामबाग सर्कल पर किया गया। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 488,000 से ज्यादा वाहनों ने सुगमता से चौराहा पार किया। ये एआई सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक ही मैनेज नहीं करता बल्कि अनुशासन भी बनाए रखता है। इस नई तकनीक से वाहनधारियों के समय के साथ ही ईंधन की भी बचत हो सकेगी। जल्द ही इसे पूरे शहर में विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
0: कोटा में आज एक सड़क हादसे में दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दो अन्य घायल हो गए। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हैंगिंग ब्रिज के पास एक बेकाबू कार के पलटने से हुई, जिसमें कार सवार युवक हादसे का शिकार हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों एनआरआई तक अपनी पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। आज नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति को बनाए रखने के लिए एनआरआई तक पहुँच बढ़ाने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2030 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पंचायतवार प्रभावी निगरानी पर जोर दिया। आरजीएचएस में नई व्यवस्था आज से लागू, मरीज ₹2,000 तक की जांच सीधे करवा सकेंगे। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर जयपुर में बैठक हुई। और राज्य में मॉनसून का पहला दौर थमने के बाद गर्मी और उमस का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। पिछले महीने कोटपूतली बहरोड जिले में कई सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियां संपन्न हुई। इसके अलावा जिले में मॉनसून ने दस्तक देकर लोगों को गर्मी से राहत दी। इन्हीं सब गतिविधियों के साथ सबसे पहले बात करेंगे दिशा बैठक की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े विषय रखे। पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों से संबंधित लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के प्रारूप पर सुझाव लेने के लिए जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि सरकार इस विषय पर सभी वर्गों की राय लेना चाहती है। बैठक में जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें लोगों की राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, बिजली, पंचायत, चिकित्सा और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोगों ने शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराया। ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान ग्राम पंचायत पवाना अहीर की एक बुजुर्ग महिला की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी समस्या का समाधान किया गया। तकनीकी कारणों से उनका वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा था। प्रशासन की टीम उनके घर पहुंची और ओटीपी आधारित प्रक्रिया से सत्यापन पूरा किया। इससे उनकी पेंशन फिर से नियमित होने का

0: रास्ता साफ हुआ। इस पहल की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की। संभागीय आयुक्त और जिला प्रभारी सचिव वी सरवण कुमार ने बांसुर उपखंड के भूपसेड़ा गांव में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि इससे खेती के साथ ऊर्जा उत्पादन का भी अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के उपयोग से किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। जिले में नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें पुलिस और संबंधित विभागों ने मादक पदार्थों की तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध शराब के मामलों की समीक्षा की। अधिकारियों को संयुक्त कार्रवाई जारी रखने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पिछले दिनों अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय खनिज विकास और पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक हुई। इसमें पुलिस विभाग, खनन विभाग, वन और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लागू नया सफर योजना की समीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय पर बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने पर कर, पंजीयन शुल्क और वाहन ऋण पर ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पिछले दिनों पावटा उपखंड के सुजात नगर में नट समाज उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने नट समाज की कला और सांस्कृतिक परंपराओं की सराहना की। श्री बागड़े ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रकृति को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला पिछले दिनों आयोजित हुई। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण, जैविक खाद, फसल विविधीकरण और कम लागत वाली खेती की तकनीकों की जानकारी दी। इस महीने जिले में मॉनसून ने दस्तक दी। कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। हालांकि फिलहाल मॉनसून कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियां थमी हुई है। इसके साथ ही कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, साल 2030 ताई राजस्थान ने टीबी मुक्त बनावण रो लागस। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पंचायतवार असरदार निगरानी माथे जोर दियो। आरजीएचएस माए नुआ बंदोबस्त आजू लागू। मरीज 2000 रुपया ताई री जांच सीधी करा सकेला। प्रदेश ने ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भर बनावण और डिस्कोमरी माली हालात मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा माथे जयपुर माए मीटिंग हुई। और राज्य में मानसून रो पहलो दौर थमण रह पछे गर्मी और उमस रो असर बध्यो। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े टीबी मुक्त राजस्थान सारू पंचायतवार असरदार निगरानी क्रिया जाऊन सारू निर्देश दिया है। श्री बागड़े आज लोक भवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन री प्रगति री समीक्षा कर रिया हा। वणा गांवा ने टीबी मुक्त करण सारू ग्राम सेवकारी जवाबदेही माथे जोर दियो। राज्यपाल कहो के टीबी रा आंकड़ा माए नहीं बल्कि व्यवहार माए हर एक मरीज माथे ध्यान देवण री जरूरत है जीणो टीबी रो पूरी तरह खात्मो करियो जा सके। राज्यपाल टीबी रोगियां ने नीक से मित्र की टी बांटिया। ई मौके चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो के राज्य ने साल 2030 ताई पूरी तरह टीबी मुक्त कर दिया जाएला। वना बतायो कि राजस्थान में अभियान रो 90% लगस पूरो कर लीजियो है। बत्ती जोखिम वाला 11,032 गांव रो सर्वे करीजियो है। इन मायू 9,032 गांव माए खास शिविर लगार टीबी मुक्त राजस्थान सारू कार्रवाई करीजी है। श्री खींवसर बतायो कि राजस्थान में देश माए सबू 32 एक्सरे स्क्रीनिंग करीजी है। राज्य रा NHM निदेशक जोगाराम बतायो के शहरी स्थानीय निकाय में टीबी मुक्त वार्ड अभियान चालू करियो जायला। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में जांच सारू नुआ बंदोबस्त आज लागू वे गया है। इन रे तहत 2000 रुपया तायरी जांच सारू पहलाऊ मंजूरी नहीं लेवनी वेला। वठे तुरंत जांच रा मामला में TPA ने एक घंटा

0: और दूजा मामला में 3 घंटा में मंजूरी देवनी वेला। तय भगत में कोई फैसलो नहीं होन माथे अर्जीदार ने ऑटो अप्रूव्ड मतलब खुद मंजूरी मानी जाएला। वठे इमरजेंसी मामला में पहला रीत रही किणित रही पहलाऊ मंजूरी री जरूरत नहीं वेला। ध्यान जोग है कि टीपीए रो खास का मरीजा ने कैशलेस इलाज और बीमा दवारी प्रक्रिया ने संभालनो है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए अस्पताल रे साथे मिलने इनने मंजूरी करे है। सरकार आरजीएचएस जुड़िया सगला प्राइवेट अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर ने इनरी करड़ाई पालना करने का निर्देश दिया है। देश भर में जुलाई महीना ने अंगदान जागरूकता महीना रा रूप में मनायो जावे है। ई कड़ी में प्रदेश में लोगों ने अंगदान स्वरूप प्रेरित करया जावे। राज्य अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन सोटों जुड़िया डॉक्टर धर्मेश शर्मा बतायो कि न्यारी न्यारी जागरूकता गतिविधियां री मार्फत अंगदानों जुड़ी गलतफहमियां दूर करी जायला।
1: हम आम जन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रांडेड के बाद में अगर उनमें से 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज सिरोही जिला रा आबू रोड पुग्या। वणा मानपुर माए भगवान बुद्ध री मूर्त रो अनावरण करियो। ई मौके वणा भगवान बुद्ध रा शांति करुणा और मानवता रा संदेश ने जन जन ताई पुगाउन री अरज करी। श्री अठावले सद्भाव और सामाजिक समरसता ने आज रा भगत री जरूरत बताया। खबर नवीसा साथे बतलमाए वणा कयो के सरकार जनहित योजनावारी मार्फत हर तबका ने राहत देवण री कोशिश कर रही है। वणा कयो के एमएसएमई सेक्टर ने मजबूत करने रोजगार रा मौका बधाया जा रिया है।
2: एमएसएमई के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। किसानों की जो फसल है इस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा भाव मिले उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और जो जो बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजनाएं आती है तो उनको पूरी मदद करने का हमारी सरकार की तरफ से होगा।
0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली खास रेलगाड़ी आज जयपुर रा दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन रवाना हुई। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत इन्हें हरी झंडी दिखा रवाना करिया। आ रेलगाड़ी तीर्थ यात्रियों ने रामेश्वरम और मदुरे ले जावेला। ई मौके श्री कुमावत कहो कि तीर्थ यात्रियों री सुविधावां सारू के इंतजाम करी जिया है। बुजुर्गों ने किणी तरह री परेशानी नहीं होवे इस सारू यात्रा रे दौरान अहलकार डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहवेला। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इन साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। प्रदेश ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भरता कानी तेजियों कदम बढ़ा रियो है। इस हारू डिस्कोमरी माली हालात ने मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा ने लेर आज जयपुर माए समीक्षा मीटिंग भी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री अगुवाई माए भी ई बैठक माए कर्ज पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर री प्रगति माथे चर्चा करी जी। मुख्य सचिव आधुनिक तकनीक ने काम माए लेवण और अक्षय ऊर्जा परियोजनावां ने भगत सर लागू करण री जरूरत बताई। वणा कयो के पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और दूजी सौर ऊर्जा परियोजनावां मिलण वाली बत्ती री बिजली भंडारण सारू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम महत्व है। इणु पीक आवर्स माए महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होवेला और डिस्कॉम ने हर साल चोखी बचत वेला इनरो फायदो उपभोक्तावां ताई पुगेला। कोलंबिया माए भी 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड माए भारतीय टीम सोना रो तमगो हासिल करियो है। बुकारा मंगा माए भी ई होड माए कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बैडाले, ऋषित गर्ग, श्रीश सुरैया और स्वरित जोशी भेड़ा रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई कामयाबी माथे भारतीय टीम

0: सगळा प्रतिभागिया ने बधाई दी है। श्री मोदी इन देश री युवा शक्ति रो विज्ञान रे प्रति जुनून बताया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई देश रो मान बढ़ावन वाला आ हुनरवान नौजवाना ने बधाई देवता वारा चोखा भविष्य री कामना करी है। मौसम राज्य में मानसून रो पहलो दौर थमण रे साथ ही गर्मी और उमस रो असर फेरू बद गयो है। घणकरी ठोड़ा तापमान में बढ़वार भी है। दिन रे साथ ही रात में उमस बण्योड़ी है। फलोदी में काले पारो 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज करीजो। इनरे अलावा बीकानेर जैसलमेर चूरू श्रीगंगानगर और अलवर में दिन रो तापमान 38 डिग्री सेल्सियस ऊपर रियो। उठी ने हनुमानगढ़ में तेज गर्मी और उमस रे बीच आज दोपहर पछे मौसम बदलियो और कुछ देर अंधड़ रे साथ ही झमाझम बिरखावी। सिरोई में छाटा छिड़कोवियो। मारा खबरनविश बतायो के आ दिना घनी तादाद में सैलानी आबूराजरी सुंदरवादियां रो लुत्फ उठा रिया है।
1: सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। पहाड़ियों पर छाए बादल, धुंध से ढकी वादियां और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पर्यटक नक्की झील में नौकायान का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: मौसम महकमो 15 जुलाई रे पछे मानसून रो नुआ सिस्टम सक्रिय होने री आस जताई है। इन रे पछे 2-3 दिन में कमजोर पड़ियो मानसून फेरू गति पकड़न रा आसार है। आज जयपुर और भरतपुर संभाग रा 9 जिला में कटई कटई छुटपुट बिरखा वह सके है। वही आवता 2-3 दिन में बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू और आरएसआरए रा हल्का में हल्की बिरखारी आस है। जोधपुर और बीकानेर में धूल भरी आंधी चालन रा आसार है। जयपुर शहर में ट्रैफिक बंदोबस्त सारू आधुनिक तकनीक रे साथ है 9वीं शुरुआत होवन जारी है। इनरे तहत बेगाई सिग्नल रो फिक्स टाइमर बंद वेला और सगड़का माथे सीधा ट्रैफिक रा हिसाब सिग्नल अबे अपने आप बदलेला। न्यूज डेस्क को हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजीरी रिपोर्ट।
2: 24 घंटे काम करने वाली एआई आधारित ये व्यवस्था पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 39 दिनों तक इसका ट्रायल रामबाग सर्कल पर किया गया। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 488,000 से ज्यादा वाहनों ने सुगमता से चौराहा पार किया। ये एआई सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक ही मैनेज नहीं करता बल्कि अनुशासन भी बनाए रखता है। इस नई तकनीक से वाहनधारियों के समय के साथ ही ईंधन की भी बचत हो सकेगी। जल्द ही इसे पूरे शहर में विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
0: स्कूल शिक्षा महकमा कानियों काले जयपुर में राज्य थरी वेबिनार रो आयोजन करो जायला। स्कूल शिक्षा महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव बतायो के आ वेबिनार प्रदेश भर रा सगड़ा पीएम श्री स्कूल रा प्रधान सारू वेला। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होवन वाला ई कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने असरदार लागूकरण नवाचार और सह शैक्षणिक गतिविधियां माथे मंथन करो जायला। वस्त्र प्रदर्शनी भारत टैक्स 2026 काले नवी दिल्ली में शुरू वेला। देशरी सब मोटी वैश्विक वस्त्र नुमाइश रो आयोजन भारत मंडपम में करो जायला। 4 दिन री नुमाइश में कपड़ा फैशन प्रौद्योगिकी नवाचार निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार रा हल्का में भारत री बदती अगुवाई रो प्रदर्शन करो जायला। ओ निर्माताओं निर्यातक वैश्विक खरीदार निवेशक नीति निर्माताओं अंतर्राष्ट्रीय नुमाइंदा मंडल कारीगर स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं ने एक मंच माथे लावेला। कोटा में आज एक सड़क हादसा में 2 लोगों की मौका माथे मौत वेगी वठे 2 दूजा घायल वे गया। हादसो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 माथे हैंगिंग ब्रिज कने एक बेकाबू कार रे पलट जावणु वी हो। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिरू सुन ले रहो। साल 2030 ताई राजस्थान ने टीबी मुक्त बनावण रो लगस। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पंचायतवार असरदार निगरानी माथे जोर दियो। आरजीएचएस में नुआ बंदोबस्त आज लागू। मरीज 2000 रुपया तैयारी जांच सीधी करा सकेला। प्रदेश ने ऊर्जा हल्का में आत्मनिर्भर बनावण और डिस्कोमरी माली हालात मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा माथे जयपुर में मीटिंग भी। और राज्य में मानसून रो पहलो दौर थमण रे पछे गर्मी और उमस रो असर बध्यो। नेंडर साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी में प्रसारित करो जायला। नमस्कार।
3: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झालावड़ का चंद्रभागा चैनल है। शाम के 7 बजे हैं।

कृषक चौपाल सुन वाला सभी किसान भाई बहनों के ताई आपका साथी अशोक कुमार शर्मा को गुणों गुणों राम राम। किसान साथियों, अभी अपना सभी किसान भाई बहनों ने खेत में के ताई आपन खरीफ की फसल बो रखी है और फसल की चाल भी अबान अच्छी है, बढ़वार भी अच्छी है और कहीं कहीं देखो इंद्रदेव अभी थोड़ा मानसून में कमज़ोर भी है तो कहीं पानी की आवश्यकता भी अपना फसलों के ताई लागबा लागी है और कहीं अभी फसलों में पर्याप्त मात्रा में पानी भी है तो कहीं बरस भी रहा है और कहीं तरसा भी रहा है। अच्छा अभियान या इंद्र देवता की कृपा हो रही है, पर देखो किसान को एक विश्वास दृढ़ रहे, विश्वास सच्चो रहे तो ऐसी बात नहीं है कि बरसा बरसेगा भी और तरसा भी रहा तो बरसेगा भी और इन आस के साथ अपना जो कृषि कार्य है वह अपने करता रहवा, निरंतर खेत में अपने देख रेख अपना फसलों की करता रहवा। साथ ही साथ आज चर्चा का विषय में बात करा कि जीवामृत को निर्माण और इनको उपयोग किन प्रकार से करो जाए। किसान साथियों देखो अभी कई दशकों से अपने देख भी रहा है कि अपने खेतों में रसायन को प्रयोग आपने ज़्यादा कर रहा है और उनका दुष्परिणाम भी आपने सामने आ रहा है। अपनी मिट्टी भी दूषित हो चुकी है, पर्यावरण भी दूषित हो रही है, फसल के ताई भी रसायन में जो आपने ज़्यादा प्रयोग करा तो फसल के ताई भी उनमें नुकसान रहे और जो फसल को उपयोग कर रहे हैं उनके ताई भी नुकसान है और कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से भी अपना किसान साथियों के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ बढ़तो जा रहा है। तो इन समय में और इना का निराकरण के लिए कई चीज़ें हैं, इना का विकल्प है रसायन का कि जैसे देसी खाद है, एक और खाद है जीवामृत। जीवामृत खाद अपने घर पे भी किसान साथी बना सके और ये बहुत ही सरल है और इनका प्रयोग कर बसूँ अपना कई मतलब खाद की बचत भी हो जावे और अपनी फसला में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ोतरी होवे, साथ ही साथ लागत भी कम रहे, पानी की भी बचत होवे। तो किसान साथियों और ये की जो सामग्री है वह लगभग अपना गाँव में घर पे ही मिल जावे। एक तो सबसे पहले देसी गाय को गोबर 10 किलो ले लें अपने, क्योंकि 200 लीटर अगर अपना जीवामृत बनाना है तो उमें देसी गाय का गोबर 10 किलो, देसी गाय का गोमूत्र 10 लीटर, गुड़ 2 किलो, बेसन या दाल को जो आटो रहे वो 2 किलो और बरगद का या पीपल का पेड़ के नीचे की जो मिट्टी रहे एक मुट्ठी के बराबर अपने मिट्टी ले ला, क्योंकि उनमें बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया रहे जो अपनी मिट्टी के ताई फसला के ताई अच्छा रहे, तो वे बैक्टीरिया के लिए अपने बरगद की या मिट्टी पीपल की मिट्टी अपने काम में लेवा और 200 लीटर पानी प्लास्टिक का ड्रम में लेवा। यहाँ सावधानी एक रखा कि लोहा को ड्रम को उपयोग नहीं करा और यहाँ समय मिला करके रोज सुबह शाम जैसे घड़ी की सुई घूमे उन्हीं दिशा में अपना 10 मिनट तक घुमाणो है। और किसान साथियों जो अपनो जीवामृत रहे यो 48 घंटा सो लेर 7 दिन में अपने तैयार हो जावे और इनका कई सारा फायदा और अपने यानी घर पर बना सका। और एक के भी के अपने जो देसी गौ माता है वह धरती को आधार है, तो कहीं ना कहीं अपने जो पशुपालन करा तो एक देसी गाय को पालन जरूर करा ताकि अपनी भूमि में अपनी भूमि को सुधार भी करें, अपनी भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए देसी गाय को खाद गोमूत्र बहुत जरूरी है। तो इन प्रकार से अपने जीवामृत को निर्माण कर सका। तो या तो अपना ने आज बात करी चर्चा में कि जीवामृत को प्रयोग निर्माण और उपयोग फसलों पर छिड़काव भी के रूप में भी कर सका और अपने यही मिट्टी में भी मिला सका, साथ ही साथ अगर अपने फसला में पानी दे रहा है तो ड्रिंचिंग का माध्यम से भी जीवामृतता अपनी फसला में दे सका ताकि वह जड़ा में जा करके और पौधा स्वस्थ बनावे। देखो बात अपना ने करी, साथ ही साथ अभी जो वर्तमान समय में अपना किसान साथियों ने खरीफ की फसल में सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, कई प्रकार की फसलें लगा रखी है। तो आज बात करा मक्का और ज्वार में खरपतवार कीट एवं रोग नियंत्रण अपने किणी प्रकार से करा और यह जानकारी दे रहा है प्रगतिशील किसान श्री अभिषेक जी पाटीदार। तो किसान साथियों सुना इना का कृषि अनुभव और लाई को पूरो लाभ।

0: किसान साथियों राम राम। अभी वर्तमान समय में आपना सभी किसान भाई बहनों ने खरीफ की फसल लगा रखी है। खरीफ की फसला के लेयर सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, उड़द है, कई फसला की खेती कर रखी है। पर आज अपना विषय में अपने जानकारी लेकर आया है मक्का और ज्वार में खरपतवार कीट एवं रोग नियंत्रण, और यह जानकारी दे रहा है अभिषेक पाटीदार जी, जो बहुत ही जागरूक और प्रगतिशील किसान है। चला आज इना का कृषि अनुभव सुना। राम राम साहब।
1: राम राम।
0: कई नाम छे आपको?
1: अभिषेक पाटीदार।
0: अभिषेक जी किनी गांव का रहवा वाला हो?
1: ओसारा गांव।
0: तो अभिषेक जी आपना किसान साथिया के ताई आप यह बताओ सबसे पहले तो कि जो अभी वर्तमान में अपना किसान साथिया ने मक्का और ज्वार की जो फसल लगा रखी, आपने खरपतवार नियंत्रण किनी प्रकार से?
1: देखिए आप जैसे मक्का और अपने एरिया में अभी लगा हुआ है मक्का और सोयाबीन और ज्वार वगैरह लगा हुआ है, तो इसमें अपन खरपतवार नियंत्रण के लिए मेन तो एक यांत्रिक विधि पर जा सकते हैं। पहली तो वो है
0: जी जी जी।
1: तो भाई यांत्रिक विधि में यह है कि आप अगर उसमें खरपतवार नियंत्रण आप निंदाई गुड़ों के थ्रू कर सकते हैं, निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं
0: जी।
1: उसमें आप खुरपी के थ्रू निंदाई गुड़ाई करा सकते हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: या फिर कुछ करपा वगैरह निकाल सकते हैं, उससे हाँ। भी खरपतवार काफी नियंत्रित हो जाता है।
0: अच्छा, मतलब आपको केवो है कि आपने जो फसला है मक्का ज्वार है इनमें खरपतवार में सबसे पहले यांत्रिक विधि से नियंत्रण करा?
1: पहले यांत्रिक विधि से नियंत्रण कर,
0: कुल्पा चला करके या हाथ से भी निंदाई गुड़ाई करके।
1: और अशोक में जैसे आवेगा पानी, बिल्कुल पानी गिरते रहे, भाई पानी गिरते रहे, आप टाइम नहीं मिलेगा यार, ना मौसम वश हो, गिलो रहे खेत भी गिलो रहे
0: जी, जी।
1: में ना आप निंदाई करा सको, ना गुड़ाई करवा सको, ना आप करपा वगैरह निकलवा सको। उनके लिए फिर आप टेक्निकल की तरफ आ जाओ, केमिकल फॉर्मुलेशन। केमिकल फॉर्मुलेशन में आप फिर उसमें थ्रू आपके खरपतवार नियंत्रण कर सको।
0: अच्छा अच्छा, तो दो विधि है आपने फसला में खरपतवार नियंत्रण के लिए, एक तो यांत्रिक विधि है और एक रासायनिक विधि है। तो सबसे अच्छी विधि तो अपना अगर माना तो यांत्रिक विधि ही है, जो आपने फसल के लिए
1: अपनी हाँ। फसल की आपकी ग्रोथ अच्छी होगा, अच्छे होने जमीन में अच्छे पोचो आगा जमीन,
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो वो तो अच्छो ग्रोथ करेगा।
0: अच्छा, तो यांत्रिक विधि से अगर आपने नियंत्रण करेगा तो मिट्टी के लिए भी, अपने फसला के लिए भी और किसाना की जेब के लिए भी है, सबके लिए फायदेमंद रहेगा। वाह साहब, तो पर कई परिस्थितियां रह गए जिनमें किसान साथी यांत्रिक विधि से मान लो कि खरपतवार नियंत्रण को नहीं कर पायो, तो अगर आपने रासायनिक की बात करा
1: जीवन के लिए, फिर आप रासायनिक विधि पे थ्रू,
0: तो रासायनिक विधि में ज्वार और मक्का में किणी प्रकार से आपने खरपतवार नियंत्रण कर सका?
1: ज्वार और मक्का के लिए अलग अलग भी आवे और एक भी आवे, जैसे आप ज्वार और दोनों मक्का के लिए लियो तो आप 2,4-D का यूज कर सको, उनमें आपके ज्वार में भी खरपतवार नियंत्रण हो जाए, मक्का में भी खरपतवार नियंत्रण हो जाए। लेकिन ज्वार में ऐसी एक ज्वार में आप कुछ चीजें नहीं डाल सको जो मक्का में डले।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे मक्का की आपने बात करा सबसे पहले, तो इनमें किनी प्रकार से रासायनिक विधि या हर्बिसाइड को प्रयोग कर सका?
1: मक्का में आपके सबसे 2-3-4 टेक्निकल आवे, मक्का में बहुत सारा टेक्निकल आवे खरपतवार नियंत्रण। एक आवे आपके टेम्बोट्रायोन 34% में
0: जी जी,
1: आप टेम्बोट्रायोन को यूज कर सको ये मक्का के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए। वन में आप टेम्बोट्रायोन की एक जो 57 ml की डिब्बी आवे
0: जी,
1: वह 57 ml की डिब्बी को आपको 4 टंकी बनानी है
0: जी जी जी।
1: 4 गिलास पानी में घोल लो और 4 टंकी बना लो।
0: अच्छा,
1: और स्प्रे कर दो एक टंकी,
0: उससे मक्का में चौड़ी सकड़ी पत्ती का,
1: चौड़ी सकड़ी दोनों तरह को आपके खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा।
0: वाह साहब साहब, बहुत अच्छी।
1: अगर वन से थोड़ो आपके एड़ो थोड़ो बड़ो हुई गयो, आपके खरपतवार वगैरह थोड़ो बड़ो हुई गयो
0: जी,
1: वो नियंत्रण नहीं वीरियो ज्यादा ही है, तो आप फिर दूसरा टेक्निकल की तरफ जा सको, उनमें टोपरामिजोन आवे
0: जी।
1: टोपरामिजोन 34% आवे, टोपरामिजोन में आप वने टोपरामिजोन की 30 ml की डिब्बी आवे एक
0: जी,
1: 30 ml की जो मात्रा आवे उन्हें 30 ml की मात्रा है, आप 8-10 टंकी तक उन्हें बना सको
0: जी जी जी।
1: 8-10 टंकी बना के आपके 2-2.5 बीघा तक वह आ जाएगा।
0: आपका किसान साथी सबसे बात आपने बताई
1: जी
0: कि खरपतवार का हिसाब से ही दवाई को चयन
1: जी। खरपतवार आपके जत्रो है, छोटो है, बड़ो है, अभी 2-3 पत्ती अवस्था में होगा तो अच्छा नियंत्रण हो जाएगा। पहले आप पानी और नमी रहनी चाहिए, बस ये है कि खेत में नमी अच्छी रहनी चाहिए और खरपतवार 2-3 पत्ती अवस्था में होना चाहिए।
0: तो खरपतवार अगर कम है किसान साथियों तो उनके हिसाब से ही अपने दवाई को चयन करा, और अगर अधिक है तो फिर उनके हिसाब से अपने कृषि विशेषज्ञ की

0: सलाह लेकर के काम करा।
1: जी जी
0: वह साहब बहुत ही अच्छी बात बताई, दो ही विधि के ऊपर आपने सारगर्भित बात बताई, साथ ही साथ बात करा मक्का और ज्वार में कीट रोग प्रबंधन की बात करा। कीट है, रोग है, तो अभी कई कई कीट मक्का और ज्वार में लागबा की संभावना है।
1: जी, मक्का में और ज्वार में मेनली दो ही में कॉमन ही लागे
0: जी।
1: तो एक तो आपके अमेरिकन सुंडी लागे जो हरी वरी इल्ली रहे
0: जी,
1: वह लागे मेन, तो फिर एक मक्का में लगे काली वाली इली भी लगे
0: जी।
1: और आपके मक्का में ज्यादातर अंदर पोटा में इली लगेगा।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और वह नॉर्मल दवा से आपके मरेगा को नहीं, जैसे आप प्रोपेनोसाई पर यूज करोगा तो वैसे कही है कि वह सिर्फ गैस बनागा प्रोपेनोसाई पर, ऊपर ऊपर की इली मर जाएगा
0: जी, जी, जी।
1: लेकिन अंदर की जो पोटा में इली वह नहीं मरेगा।
0: अच्छा अच्छा, जो अंदर मक्का में अंदर छिप करके बैठी है वह नहीं मर पाओगा, तो उनके लिए फिर कशो रसायन को आपने प्रयोग करा।
1: उनके लिए आप स्टार्टिंग जैसे छोटी मक्का है अभी स्टार्टिंग फेज में आप इस्तेमाल कर सको उनमें सिस्टमेटिक, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट आवे 5%
0: जी,
1: वण को आप यूज कर सको, वण के साथ में आप सिलिकॉन स्टिकर चिपको मिला सको, सिलिकॉन चिपको
0: जी, जी, जी,
1: वण को डाल के अच्छी तरह से एक बीघा में कम से कम 4 टंकी डालो नॉर्मली।
0: तो प्रारंभिक अवस्था में आपने इमामेक्टिन बेंजोएट को प्रयोग आपने कर सका है, और अगर ज्यादा फिर आपना लगे आगे तो फिर आपने और
1: भी टेक्निकल की तरफ जा सको, जैसे आपके कॉम्बिनेशन में बहुत सारी कंपनियों का आवे जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट रहे, एबेस्टिन रहे 1.5%, उनके अलावा आपके लेमड़ा साइलोथ्रीन है 4.9 में जा
0: जी,
1: सको
0: जी,
1: आप
0: जी, जी, जी।
1: सिस्टमेटिक दवाइयों को मक्का में सबसे बेस्ट रिजल्ट सिस्टमेटिक दवाइयों से मिलेगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और यही बात अगर ज्वार में भी करा तो वैसे ज्वार में तो रोग कमी ही लागे,
1: ज्वार में कमी लागे, जैसे ज्वार में भी नॉर्मली बड़ी होया बाद ज्वार के जैसे आपके भुट्टो आगा ज्वार को तो वण में कही है फिर इल्ली की समस्या भी आवे।
0: अच्छा अच्छा,
1: आप वण में नॉर्मली प्रोपेनोसाइपर डाल सको, इमामेक्टिन डाल सको, क्योंकि ज्वार बड़ी रहे तो वण में आप प्रोपेनोसाइपर मेनली डाल सको, प्रोपेनोसाइपर से आपको कीट नियंत्रण हो जाएगा।
0: अच्छा अच्छा, तो यह तो आपने कीट और रोग
1: इल्ली की बात, जैसे कीट में आवे तो आपके कीट में व्हाइट फ्लाई आवे, थ्रिप्स आवे कहीं कहीं जुआर में
0: जी जी,
1: और उनके अलावा उनमें आपके कहीं कहीं कोई कोई जुआर में सड़वा की भी समस्या आवे, उनमें आप फंगीसाइड को स्प्रे कर सको। मक्का रहे तो मक्का में भी कही है कि आपके स्टार्टिंग जब ग्रोथ रहे मक्का की
0: जी जी,
1: तो उनमें पीली परवा की ये समस्या आवे, एक उनमें मक्का में सड़न पकड़ो लग जावे जड़ा में हुआ, तो उनके लिए आप नॉर्मली कशु भी फंगीसाइड ले लो, मेंकोजे 45 ले लो।
0: अच्छा अच्छा,
1: या फिर आप कार्बेंडाजिम 12/63 ले लो, या फिर थायपिनाइड 70% ले लो, आप कशु भी लेके उनमें एक बार स्प्रे कर दो इल्ली की दवा के साथ, आप मिला के उनमें स्प्रे कर सको, और सिलिकॉन चिप को जरूर डालो।
0: अच्छा,
1: और नमी की अवस्था में डालो, मेन है नमी,
0: तो नमी की अवस्था में अगर आपने डालेंगे तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। जिससे आपने देखा कि मक्का में कभी जल भराव हो जावे, ज्वार में भी जल भराव हो जावे, जड़ गलन की समस्या आवा लागे, तो इनमें भी आपने फंगिसाइड को प्रयोग कर सका
1: जी। जैसे आपके अगर कोई फसल गलवा लगी हो
0: जी,
1: और में फंगस की समस्या हो, गलन हो रही हो फंगस में, तो उनमें आप फंगिसाइड को स्प्रे कर सको
0: जी।
1: और मैं आपके जैसे अगर कोई फसल गर रही हो तो आप वहाँ यांत्रिक विधि को भी इस्तेमाल कर सको, उनसे आप ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
0: कैसे मतलब?
1: जैसे आप उनमें करपा निकलवाल सको।
0: अच्छा,
1: करपा निकलवालोगा नहीं तो उनसे कही है कि जमीन खुल जाएगा, उसमें हवा वगैरह सब, तो उनमें आपके अच्छो असर आएगा, उनमें पौधा अच्छो चलेगा।
0: यह तो अपने ने बात करी कीट व्याधि नियंत्रण की, आपने मक्का में ज्वार में जो भी कीट रोग प्रबंधन की बात अपने ने करी
1: जी जी।
0: साथ ही अभी वर्तमान समय में
1: जी,
0: कई किसान साथियों ने अपने सभी प्रकार की फसलां लगा रखी है, तो इस समय में अपने किसान साथी कई ध्यान रखना अपने फसलां को। अंत में आप अपना किसान साथियों के ताई कई संदेश देबो छो
1: जी? संदेश यो देनो छो मुक, जैसे कि आप मक्का बा रखी, आपने सोयाबीन बा रखी, कई भी चीज बा रखी, तो एक तो आप देखो उनमें देख रेख करो उनकी
0: जी, जी।
1: आप टाइम टाइम पे आप जैसे बोई और कटी है मत छोड़ो, आप टाइम टाइम पे उसमें देखो कई दिक्कत आई रही है अपनी फसल, आपने फसल अपने बच्चे की तरह समझो। आप वन में जाके कई स्थिति है सोयाबीन की, कतरा फूल एरिया कहीं टाइम पे एरिया, आपके मक्का है तो वन में कोई भुट्टा वगैरह कुछ इल्ली ज्यादा तो नहीं है, कुछ जानवर आवे जैसे कि जानवर कोई नुकसान तो नहीं पूछ रहे आपके, आप वही हिसाब से उनमें देख रेख करो टाइम टाइम पे, जो जरूरत हो वह टाइम पे डालो, जो जरूरत नहीं है वो आप पता तो चली जाएगा आप देख रेख करोगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यही
0: बिल्कुल आपको केवा को मतलब है कि किसान सत्याओं अपना खेत को नियमित भ्रमण करा अपने
1: जी, जी।
0: ताकि अपनी फसला में अगर कोई कीट व्याधि लग भी रही है तो वह भी अपना पतो लग जावे, और साथ ही साथ उनसे अपने समय से पहले अपना सचेत हो जाओ। वह साहब अभिषेक जी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी अपने किसान साथी के ताई।

0: के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
1: राम राम।
2: जलवायु साझेदारी, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। जिन देशों से ज्यादा प्रदूषण होता है उन्हें आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और गरीब और कमजोर देशों को पैसा, तकनीक और जरूरी मदद देनी चाहिए। UNFCCC जैसे ढांचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में यूनाइटेड नेशंस एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब वादा करने का नहीं, काम करने का समय है। साथ मिलकर हमें कम कार्बन वाले एक सुदृढ़ भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के सिर्फ 5 सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश मिलकर लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहे थे। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
0: और किसान साथियों, वापस इन बातचीत के बाद जो अपना किसान साथी ने बात बताई कि किणी प्रकार से अपना सबसे पहले तो अपने जो खतपतवार को अपना नियंत्रण करना है फसला में, तो वो यांत्रिक विधि से करा, क्योंकि अभी किसान साथियों के पास में समय भी है, तो कुल्पा चला करके हाथ से निंदाई गुड़ाई करके और यांत्रिक विधि से अपनी फसला में अपने खतपतवार को नियंत्रण करा, और अगर फिर भी अगर नहीं हो पावे तो फिर आपने रासायनिक विधि की ओर बढ़ा, फिर दवाई को प्रयोग आपने करा, पर जहाँ तक हो सके यांत्रिक विधि से ही खतपतवार नियंत्रण को आपने जहाँ तक हो प्रयास करा, ताकि अपनी पर्यावरण के ताई, अपनी फसला के ताई रसायन को खतरो उमें नहीं हो पावे। साथ ही देखो अभी फसला में वैसा तनाव की अवस्था भी कहीं कहीं आवा लगी है, क्योंकि मानसून भी थोड़ो कमजोर पड़ गयो, तो कहीं इंद्र देवता बरस भी नहीं रहा है, कहीं तरस भी रहा है, और वर्षा ऋतु के लिए सभी प्रार्थना भी कर रहा है, और कहने के रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये सब पानी की ही माया है, और आपने सब जो कहने का खेती एक जुआ है, तो पानी के भरोसे ही आपने सब बैठा है। तो अपना कार्यक्रम में देखो अपने किसान के हित की बात करा, तो अपने सब प्रार्थना करा कि भी प्रार्थना ही कर सका कि अपने खेती के साथ साथ एक भगवान से भी, सभी कई गांवों में देखा अपने के पानी के लिए कोई मन्नता मांग रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, तो अपने कार्यक्रम में भी एक इंद्र देवता से अपने भी प्रार्थना करा कि कहीं ना कहीं सब आप किसान साथियों के ताई तर बतर कर दो और फसला के ताई बहुत सारोबार कर दो पानी से, क्योंकि आपकी आवश्यकता है। तो सुना यो सीमा मिश्रा को गायो लोक गीत और लाई को आनंद।

खरीद आपने जो करा है और उना में भी छूट दी जावे, साथ ही साथ पशुओं को बीमो भी में करायो जावे है। तो मंगला पशु योजना भी बहुत ही पशुपालका भाई के लिए बहुत अच्छी योजना है, इको भी आपने लाभ ला। साथ ही अपना कार्यक्रम को अब समय भी पूरा होबा में चाल रहो, तो आपका साथी अशोक कुमार शर्मा का ताइंदो जालबा की आज्ञा, राम राम।

अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल। ये प्रसारण आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से किया जा रहा है 3.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत है मन्ना डे की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है आशा भोसले की आवाज में, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है इजाजत।

ये विविध भारती है। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है प्रदीप कुमार और नरगिस अभिनीत अदालत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं मदन मोहन। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं मदन मोहन। फिल्म का नाम है अदालत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अगला गीत है एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं मदन मोहन और फिल्म का नाम है अदालत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज आपने सुने फिल्म अदालत के कुछ गीत राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं विजय सूरी की लिखी नाटिका जवाब दो मुझे।
1: ओ, कौल भाई, अरे कौल है। फो, फो।
2: गेट खोलो मुरलीधर।
1: हेडमास्टर साहब, ये आप हैं?
2: हाँ मुरली, गेट खोलो।
1: इतनी रात गए, आप कैसे चले आए सर?

0: बस चला ही आया मुरली, मेरा कमरा खोल दो।
1: जी अच्छा, आप दफ्तर की तरफ चलो, हम गेट बंद करके आते हैं।
0: ठीक है।
1: ये आज रात के 2 बजे कैसे आ गए? हाँ हाँ, पिछले 15 दिन से टीचिंग स्टाफ हड़ताल पर है और इन 15 दिनों में हेडमास्टर साहब की सेहत इस कदर गिर गई है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। ओहो, कहाँ गई चाबी? हाँ हाँ, ये रही। अरे, ये हेडमास्टर साहब कहाँ चले गए? हेलो, वो तो क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं। चलो, आ जाएंगे कभी। पहले दफ्तर तो खोल दूं। ये लो, सिर्फ एक ही बल्ब काम कर रहा है, ट्यूब शायद खराब हो गई है। कोई बात नहीं, अगर जरूरत हुई तो हेडमास्टर साहब टेबल लैंप रोशन कर ले हैं। अगर हुक्म होए सर तो अपनी कोठरी से चाय का कप बना कर ले आऊं आपके लिए।
0: नहीं मुरली, जाओ अब तुम आराम करो।
1: अच्छा सर, और कौनो चीज की जरूरत हो सर तो?
0: नहीं, बस तुम जाओ।
1: जी अच्छा।
0: सुनो मुरली।
1: हाँ सर।
0: ऐसा करो मुरली, सारे क्लासरूम खोल दो।
1: सारे क्लासरूम खोल सर? ई बखत?
0: हाँ।
1: क्या क्या हड़ताल खत्म हो गई सर? टीचर लोग काम पर वापस आ रहे हैं क्या?
0: सवाल नहीं मुरली, जो मैं कह रहा हूं वो करो।
1: जी जी अच्छा सर।
2: ये क्या पागलपन कर रहे हो विद्या प्रकाश?
3: पागलपन? कैसा पागलपन?
2: पागलपन नहीं तो और क्या है? रात के 2 बजे स्कूल में आना, क्लासरूम खुलवा देना, आखिर क्या है तुम्हारे मन में?
3: तुम तो जानते हो मेरे मन की बात। क्यों तुम हंस क्यों रहे हो? पर नहीं, तुम्हारी हंसी के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। आंसुओं को पीकर तुम हंसने की कोशिश कर रहे हो।
2: तुमने मुझे और अपने आप को इतना गड्ढबंड कर दिया है कि मैं चाहते हुए भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन एक बात कहूं विद्या प्रकाश?
3: बोलो।
2: तुम्हारे जैसे लोगों का आज के जमाने में कोई स्थान नहीं है। सच्चाई, उसूल, त्याग, ये सब शब्द आज के दौर में बेमानी हो चुके हैं। अगर आज के समाज में जीना चाहते हो विद्या प्रकाश, तो दूसरों के साथ कदम मिलाकर चलो।
3: तुम भी अजीब हो दोस्त, कभी तुम मुझमें मिलकर मेरे जैसे हो जाते हो और कभी हल्की सी चोट से घबरा जाते हो। सच्चाई आज भी जिंदा है, उसूलों की आज भी कद्र की जाती है, त्याग को आज भी महानता हासिल है।
2: कितने लोग मानते हैं इन बातों को? किसी ने कान धरा था तुम्हारी बातों पर? तुम्हारा हर शब्द, हर दलील बेअसर साबित हुई थी।
3: आग एकदम नहीं भड़कती दोस्त, चिंगारी से शोला और शोले से ज्वाला बनती है। मैं ये नहीं मान सकता कि सच की चिंगारी किसी के भी मन में न सुलग रही हो।
2: 20 आदमियों का टीचिंग स्टाफ है तुम्हारा, क्या किसी एक मन में भी वैसी चिंगारी को फूटते, जन्म लेते महसूस किया है तुमने?
3: हाँ, शायद एक था।
2: कौन?
3: तुम्हें ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं उस रोज जब वो सब हड़ताल का फैसला करके मेरे दफ्तर में आए थे, वो अपनी बात कह रहे थे और मैं
4: मैनेजमेंट को फायदा है, फायदा
5: हमारी बात को सुनता नहीं।
6: हड़ताल ही एक रास्ता है।
7: अरे हम भी आपके साथ हैं,
8: हड़ताल करेंगे हम लोग।
2: सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आप सबसे उम्र में बड़ा हूं और स्कूल का हेडमास्टर हूं। मेरी आपसे

0: विनती है कि पहले आप ठंडे दिल से मेरी बात सुन लें।
1: बोलिए बोलिए ना सर, हम तो सब आपके दिल से इज्जत करते हैं सर।
0: दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपकी मांगे जायज नहीं। आप जो भी मैनेजमेंट से मांग रहे हैं वो आपका हक है और आपको मिलना ही चाहिए। लेकिन लेकिन दोस्तों, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो रास्ता आप चुन रहे हैं वो गलत है।
2: गलत क्यों है सर? आज तो ये रिवाज सा बन गया है कि जब तक हड़ताल न करो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी और न ही आपकी मांगों को माना जाएगा।
3: मैनेजमेंट हमें मजबूर कर रहा है कि हम हड़ताल करें।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, आप सब सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि विद्या का प्रकाश फैलाने वाले हैं। आने वाली नस्लों को बिगाड़ना या बनाना आपके हाथ में है। जिन किताबों को पढ़कर आप इस काबिल हुए हैं, उन किताबों और उनके ज्ञान को अमर बनाना या फिर उन्हें कफन ओढ़ाकर दफन कर देना आपके हाथ में है।
1: आपकी बात कुछ साफ नहीं है सर।
0: बात बिल्कुल साफ है मिस्टर शर्मा। वो बच्चे जिन्हें आप पढ़ाते हैं, अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं, अनुशासन का उपदेश देते हैं, वो बच्चे
1: मगर हमारी मांगों और स्ट्राइक पर जाने के फैसले का बच्चों के भविष्य से क्या ताल्लुक है सर?
0: बहुत बड़ा ताल्लुक है शर्मा जी, बहुत बड़ा ताल्लुक है। आज ये बच्चे देखेंगे और महसूस करेंगे कि उनके टीचर किसी बात को मनवाने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, अपना काम बंद कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं, तो कल वो भी हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे।
1: आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं सर।
0: मिस्टर गुप्ता, कल जब आपका कोई स्टूडेंट किसी बस को जलाएगा, किसी रेल का पहिया जाम करेगा, तो वो उस किताब को जलाएगा जो आपने उसे पढ़ाई है, उस ज्ञान को बढ़ने से रोकेगा जो मानव कल्याण और उन्नति के लिए आपने उसे दिया है।
3: हमारे स्टूडेंट कल क्या करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं।
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल हैं।
3: वो किस तरह?
0: रेल, हवाई जहाज बनाने का ज्ञान आपने दिया, इंसान को मौत के मुंह से वापस ले जाने वाली दवाइयां बनाने का ज्ञान देने वाले भी आप हैं, सर्वनाश करने वाली नदियों पर बांध बांधने की शिक्षा आपने ही दी है, और अब आप ही हड़ताल, बंद और तोड़ फोड़ करने की गलत राहें दिखा रहे हैं।
1: ये सब ठीक है सर, लेकिन इन बातों से पेट नहीं भरता सर।
0: स्वार्थ, केवल अपना स्वार्थ और कुछ नहीं।
3: अजी, कौन नहीं सोचता अपने स्वार्थ के लिए?
0: सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उन जैसे हजारों लोग ये जानते हुए भी फांसी पर चढ़ गए कि आजादी का सूरज देखना उन्हें नसीब नहीं होगा, मगर उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी, और हम लोग क्या दे रहे हैं आने वाली नस्लों को?
1: भाई, ये सब कुछ तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए सर।
0: मैनेजमेंट क्या सोचती है ये दूसरा सवाल है, पहले आप बताइए आप क्या सोचते हैं। आप हड़ताल करेंगे, मैनेजमेंट का नुकसान होगा। चलो मान लो महीना 15 दिन की हड़ताल के बाद आपकी मांगों को मान भी लिया जाता है, मगर इस दौरान मासूम बच्चों की तालीम जो अधूरी रह जाएगी उसका क्या होगा?
1: आप पूरी दुनिया से अलग सोचते हैं सर। आज कौन हड़ताल नहीं करता? पुलिस से लेकर डॉक्टर तक, मिल वर्कर से लेकर इंजीनियर तक, सियासी पार्टियों से लेकर धार्मिक संस्थाओं तक, सभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं। फिर आप हमें क्यों रोक रहे हैं?
3: ये हड़ताल होकर रहेगा।
1: हाँ,
3: दोस्तों,
1: जरूर जरूर होकर रहेगी, हड़ताल होकर रहेगी।
2: कल से क्लासें बंद
1: बंद
2: चलो
1: बिल्कुल बिल्कुल बंद
3: चलो
2: चलो
3: चलो
2: आओ भाइयों
3: चलो
2: आओ क्लासें बंद
3: बंद
2: बिल्कुल आओ भाइयों
0: आप क्यों नहीं गए मिस्टर शर्मा?
1: सर, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, लेकिन
0: लेकिन लेकिन क्या मिस्टर शर्मा?
1: अगर मैं अपने साथियों का साथ न दूं सर तो गद्दार कहलाऊंगा, मेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा सर। आई एम सॉरी सर, मैं चाहते हुए भी उनका साथ नहीं छोड़ सकता सर। नमस्ते।
0: तुम बड़े भोले हो विद्या प्रकाश। शर्मा दोहरी चाल चल गया।
4: दोहरी चाल?
0: हाँ, तुम्हारे विचारों से सहमति की बात करके तुम्हें खुश भी कर गया और हड़ताल में शामिल होकर अपने साथियों का वफादार भी बना रहा। तुम अकेले हो विद्या प्रकाश, बिल्कुल अकेले, कोई तुम्हारे साथ नहीं है।
4: ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अकेला हूं?
0: आदमी दुनिया को तो धोखा दे सकता है विद्या प्रकाश, लेकिन अपने आप को नहीं।
4: क्या मतलब है तुम्हारा?

0: किसी ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया विद्या प्रकाश, यहां तक के प्रभा भी।
1: प्रभा?
0: हाँ प्रभा, तुम्हारी पत्नी। क्या कहा था उसने?
2: मैं कहती हूँ जब तुम्हारे स्कूल के मैनेजमेंट को ही कोई परवाह नहीं तो तुम्हें किस बात की चिंता है?
1: चिंता है प्रभा, मेरे स्कूल के वो मासूम बच्चे।
2: तुमने अपने स्कूल के बच्चों के अलावा कभी और कुछ सोचा है? तुम्हारे साथी ट्यूशन कर करके कारों फ्लैटों के मालिक बन गए, मगर तुम?
1: विद्या बेचने की नहीं प्रभा, दान करने की चीज है। आज तुम ये बहस क्यों लेकर बैठी हो प्रभा?
2: इसलिए कि तुम दूसरों के गम में अपनी जान हलकान कर रहे हो, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो?
1: दूसरा कौन है प्रभा? वो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो विद्या प्राप्ति के लिए वहां आते हैं प्रभा, वो तो भगवान का रूप होते हैं।
2: तो करते रहो उन भगवानों की पूजा, अकेले ही पढ़ा लो उन सबको तुम।
1: कोई मेरे मन की बात नहीं समझता, तुम भी नहीं प्रभा, तुम भी नहीं।
0: सच कह रहे हो विद्या प्रकाश, कोई भी तुम्हारे मन की बात नहीं समझता, इसीलिए तो मैंने कहा ना, तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले।
1: मैं ही गलत हूं? बोलो, जवाब दो, अब चुप क्यों हो गए हो? बताओ, क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो कुदरत के बनाए हुए उसूल गलत है। कभी कभी सूरज को हड़ताल पर जाते देखा है तुमने? कभी हवा ने बंद का आह्वान किया है? कभी धरती ने अपनी गर्दिश को टोका है? रुक जाने का नाम जीवन नहीं, मौत है मौत। बोलो, आज का इंसान मौत का पुजारी क्यों बन रहा है? मशीनों की मौत, जान की मौत, किताबों की मौत, मानवता की मौत। बोलो बोलो, जवाब दो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कहां चले गए हो तुम? बोलो ना, जवाब दो मुझे, जवाब दो, जवाब दो मुझे। गलत कौन है? खामोश क्यों हो तुम? किताबों को कफन उड़ा दिया जाए, मशीनों को आग लगा दी जाए। बोलो
3: हेडमास्टर साहब,
1: बोलो जवाब दो।
3: ये आप किससे बात कर रहे हैं?
1: क्यों नहीं हो तुम? क्या रुक जाने का नाम जीवन है? बोलो।
3: अरे पर मेरा गिरेबान तो छोड़िए सर, मेरा गिरेबान तो छोड़िए सर।
1: पहले मुझे जवाब दो, जवाब दो मुझे, मुझे जवाब चाहिए। कुदरत गलत है, कुदरत गलत है।
3: अरे तो बेहोश हो गए। पानी, हाँ पानी लाता हूँ, पानी लाता हूँ।
1: जवाब तो मुझे, मुझे जवाब तो।
4: तो ये थी नाटिका हवा महल में आज, जवाब दो मुझे। इसे लिखा विजय सूरी ने, निर्देशन किया अचला नागर ने। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।
5: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
6: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
5: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
7: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
5: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताते
5: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक। बस
9: श्रोता सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मुकेश के गाए गीत से। फिल्म है मेरा नाम जोकर।

0: Akashwani at 90.
1: अब सुनते हैं फिल्म राज में मोहम्मद रफी का गाया ये गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये प्रसारण आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से किया जा रहा है। 9:45 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार संध्या हम दिल्ली से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में

पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन

0: का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना

0: नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाश
3: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं हरिओम शरण और नंदिनी शरण की गाई इस भक्ति रचना के साथ।

भारत में गांव-गांव में कई संत घूमते रहते हैं जन जन में भगवत प्रचार करते हुए। एक वट वृक्ष के नीचे एक तारा लिए हुए एक संत बैठे हैं और उनको चारों ओर से भक्तों ने घेरा हुआ है और वो वहां पर सभी उनसे सवाल करते हैं। कुछ सवाल उसका वो जवाब दे रहे हैं। जरा बच्चों को चुप करा लें।

0: वो कहते हैं
1: कि भगवान हमारे मन में एक शंका है और वो ये है कि भव सागर से कैसे पार हुआ जाए, उसका कोई उपाय कोई युक्ति आप बताएं। तो वो कहते हैं कि तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है। और उससे पहले वो कह रहे हैं

कि कवि लोग किस प्रकार से कविता की रचना करते हैं। एक कवि ने कहा, आप ध्यान देना शब्दों पर और फिर देखना उसका अर्थ क्या है।

ऐसी कैसी कविता कि पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे बिन चैन, पाप करे से हरि मिले, पाप करो दिन रहे। फिर से सुनिए।

लेकिन नहीं, बड़ी गहरी बात उन्होंने कही है, सुनने में कुछ अनर्थ लग रहा है। कहा क्या है? पाप करे बिन गति नहीं, पा चरण पकड़े बिन गति नहीं।

0: Akashwadi at 90.
1: पंकज उदास से आइए सुनते हैं अहमद फराज का कलाम।

चित्रा सिंह की गाए इस रचना के साथ ही कार्यक्रम सब रसब समाप्त हुआ। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी झलवड़ का चंद्रभागा चैनल है। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।